सुप्रभात, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के

मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026 सवेरे के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। एफएम और मीडियम वेव के मीटर्स पर हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवा गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। सवेरे की इस बेला में आइए अब करते हैं वंदना।

राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरु जो चाहे सी उजियार। अपने अंतकरण और बाहरी जीवन दोनों में प्रकाश शांति ज्ञान कल्याण चाहते हैं तो हम सब करें राम नाम का स्मरण, उन्हीं का सुमिरन।

राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे रघुवंश के नंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज श्री राम, हे शत्रुओं का नाश करने वाले श्री राम, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करें।

रोशन हमारा दिल है मोहम्मद के नूर से, आबाद है ये रूह भी उनके शऊर से। जिस दम लबों पे आया मोहम्मद का नाम पाक, महकने लगा वजूद अदब के सुरूर से।

शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि मन को शांति दे जाए, भटके हुए कदमों को भी सच्ची राह दिखाए। गुरवाणी का हर शब्द अमृत सा संदेश है, जो सुन ले श्रद्धा से उसका जीवन श्रेष्ठ है।

माँ की भक्ति में शक्ति है, माँ की कृपा में प्यार, माँ के चरणों में मिलता है जीवन को सुख अपरंपार। जिस पर माँ की कृपा हो जाए, खिल जाए उसका संसार। प्रार्थना है कि हे माँ, तेरे जयकारों से गूंज उठे हर आंगन हर द्वार।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज कार्यक्रम में गायक कलाकार थे आशा भोसले, कुमार विशु, इफ्तिकार अहमद व साथी देवेंद्र सिंह और सोनू निगम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जो कर्तव्य कल करना है उसे आज ही कर लेना अच्छा है। मृत्यु बड़ी निर्दय है, वे कब आ जाएगी उसका कुछ पता नहीं। कल के भरोसे मत बैठे रहो, कल किसने देखा है। बस और समय मत चाहो, जो कुछ करना है अब निश्चय ही कर लो। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाने की आदत डाल लेना आसान है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी बड़े उत्तम शब्द निकृष्टतम व्यक्तियों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। हम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की चर्चा करते हैं और बहुधा तथाकथित देशभक्त निकृष्ट कार्यों में भाग लेते हैं। इसलिए इस बात का कुछ अधिक महत्व नहीं है कि मैं कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करता। अंतिम कसौटी कर्म है। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में कभी नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान क्षणों को जो व्यर्थ ही गंवाते हैं, उन नर पशुओं को नमस्कार। अधिकांश व्यक्ति जितना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं, उतने ही समय में संसार के अनेक महापुरुषों ने चिर स्मरणीय कार्य कर दिखाए हैं। जो लोग ये बहाना किया करते हैं कि हमको सेवा कार्य अथवा परोपकार के कामों के लिए अवकाश नहीं मिलता, उनको महापुरुषों के जीवन पर ध्यान देकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए। सफलता को खो देने का निश्चित तरीका अवसर को खो देना है। गया आज फिर कभी लौटने वाला नहीं है, इसलिए यदि अच्छा करना है तो आज ही कर। कौन जाने कल उगने वाला सूर्य तू देख सके या नहीं। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, वो लौट नहीं सकता। भविष्य की बात सोचो और उसे मूर्तमान करने के लिए आज ही सरंजाम जुटाओ। सुअवसर की प्रतीक्षा में ना बैठे रहो। ज्योतिषी से मुहूर्त ना पूछें। हर दिन और हर पल काम करने के लिए शुभ मानकर चलें। जो अपने कल्याण की बात है उसे आज ही करें। वृद्ध होकर क्या करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में अपने शरीर भी भारभूत हो जाते हैं। ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझ सके और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो? फिर समय को व्यर्थ नष्ट ना होने दो, क्योंकि वही तो जीवन तत्व है। समय का सदुपयोग ना करने से मनुष्य दीन और दुनिया दोनों में कंगाल हो जाता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो कार्य

0: जिसके सामने है उसे शीघ्रता और निष्कपट भाव से करना ही कर्तव्य है। यही आज के अधिकार की पूर्ति भी है। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। प्रत्येक क्षण भगवान की प्राप्ति में सेतु बन सकता है। इसलिए जीवन का कोई भी क्षण प्रमाद में न करने योग्य कर्मों में या व्यर्थ में कभी नहीं जाना चाहिए। समय की कदर करो। प्रत्येक दिवस एक जीवन है। एक मिनट भी फिजूल ना गवाओ। जिंदगी की सच्ची कीमत हमारे वक्त का एक एक क्षण ठीक उपयोग करने में है। सत्य का दुर्व्यय करना अपने ही जीवन से द्वेष करना है। समय के द्वारा ही जीवन का संगठन हुआ है। कल का काम आज और शाम का सवेरे ही कर डालो। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि तुमने क्या कर लिया और क्या शेष रह गया। अवसर की प्रतीक्षा में ना बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। उसका सही उपयोग कर सके तो बड़ा अवसर भी आपके सामने हाथ बांध कर आ खड़ा होगा। समय प्रकृति का खजाना है। घंटे और घड़ियां वे उसकी मजबूत तिजोरी हैं। क्षण उसके मूल्यवान हीरे हैं। इन अमूल्य हीरों को व्यर्थ ही इधर उधर ना फेंको।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन। FM और मीडियम वेव के मीटर्स पर इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज के कार्यक्रम में लीवर की समस्या और घरेलू नुस्खे, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, यकृत यानी जिगर, तिल्ली यानी प्लीहा एवं गुर्दे के रोग चिंता, मानसिक तनाव तथा प्रदूषित आहार विहार के कारण होते हैं। इन रोगों की उत्पत्ति अनाप शनाप दवाओं अथवा बाहर की खुली वस्तुएं खाने से भी हो सकती है। अतः ऐसे रोगों पर शुरू से ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उक्त अंगों के रोगी होने से मनुष्य को बाद में अनेक बीमारियों की शिकायत हो जाती है। आइए आज बात करते हैं यकृत से जुड़ी समस्याओं की। जिगर का बढ़ना, अपच, मंदाग्नि, कब्ज एवं अजीर्ण आदि के कारण प्रायः यकृत खराब हो जाता है। मादक द्रव्यों का अधिक सेवन करने से भी जिगर में विकार आ सकता है। जिगर का कार्य पाचन शक्ति को सुव्यवस्थित रखना है। इस विकार को जिगर बढ़ना भी कहते हैं। इस रोग में धीरे धीरे पेट बढ़ने लगता है। दिन में कई बार पतले पतले दस्त आ जाते हैं। भूख लगनी बंद हो जाती है। पेट दर्द, वमन एवं बुखार की शिकायत पैदा हो जाती है। इस रोग से संबंधित घरेलू उपचार इस प्रकार है। जिगर के बढ़ने पर छोटी पिपली को घिसकर शहद के साथ दिन में 3 लेने से अवश्य लाभ होता है। इससे तिल्ली रोग भी दूर हो जाता है। मेहंदी के पत्तों को कुचलकर रात में भिगो दे, सुबह पानी निथार कर उसे पिलाने से जिगर वृद्धि में लाभ मिलता है। 1 खाने का मीठा सोडा 1 ताजा गौमूत्र में डालकर पीने से जिगर की वृद्धि एवं गर्मी शांत होती है। यह प्रयोग दिन में 1 करें। जिगर वृद्धि में बथुआ की जड़ और काली मिर्च समभाग में पीसकर जंगली बेर जैसी गोली बनाकर 1 रोज शहद से खाएं। 25 मूली के रस में जरा सा जवाखार डालकर पीने से जिगर का बढ़ना बंद हो जाता है और जल्दी आराम मिलता है। अलसी और अरंड के बीज पीसकर पेट पर लेप करें। इससे जिगर वृद्धि में शीघ्र ही आराम मिलेगा। नीम की छाल का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से जिगर विकार में लाभ पहुंचता है। जिगर से संबंधित दूसरी समस्या है जिगर की सूजन। इस रोग में जिगर के कोषों में काफी कमी और निष्क्रियता आने से उस पर सूजन आ जाती है। शनय शनय वह कुछ सिकुड़कर छोटा तथा कठोर हो जाता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोगी को अक्सर अपच की शिकायत रहती है। कभी कभी उसे उबकाई और वमन होने की तकलीफ हो जाती है। शरीर का वजन कम होने लगता है और भूख नहीं लगती। उसे पेट में दर्द भी अनुभव हो सकता है। यदि रोग की शुरुआत में ही उचित परहेज और दवा न की जाए तो रोगी की त्वचा में पीलापन आ जाता है। हल्का बुखार रहने लगता है। पेट की नसें फूल जाती हैं। पेट फूला हुआ रहता है। शरीर और मस्तिष्क में बहुत थकावट रहती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती। रोग की इस बढ़ी हुई अवस्था का उचित इलाज समय से न करने पर मृत्यु भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शराब या अन्य नशों का लंबे अरसे तक अधिक सेवन, संक्रमण तथा लंबी अवधि तक कुपोषण होता है। इसका उपचार इस प्रकार से किया जा सकता है। गाजर का रस एक छोटा गिलास और पालक का रस एक चाय का प्याला भर परस्पर मिलाकर उसमें बहुत हल्का सा नमक व काली मिर्च डालकर पिए। इन दोनों रसों का सेवन इतनी ही मात्रा में दिन में दोनों समय करें। सप्ताह में 3 दिन इस रस का तथा इसी प्रकार 4 दिन गाजर और खीरे के मिले जुले रस का प्रयोग करें। इसे भी दिन में 2 बार लें। इन रसों का सेवन सूर्यास्त से पूर्व करने से जिगर की सूजन में लाभ मिलता है। पपीते के बीजों को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें। 1 बड़ा चम्मच चूर्ण लेकर इसमें 1/2 नींबू मिला लें। दिन में 2 बार इस चूर्ण का सेवन करने से जिगर की सूजन में पर्याप्त लाभ मिलता है। सूखे आंवले का चूर्ण 4 ग्राम या आंवले का रस 25 ग्राम एक छोटे गिलास में शुद्ध जल में अच्छी तरह मिलाकर दिन में 4 बार सेवन करें। शीघ्र ही जिगर की सूजन खत्म होकर कायापलट हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी की पकी हुई जामुन 300 ग्राम प्रतिदिन खाली पेट खाएं। शाम को सूर्यास्त से पूर्व पुनः 200 ग्राम खाएं। यह यकृत के सभी रोगों में लाभदायक सिद्ध होती है। बड़ी पीली हरड़ को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1.5-1.5 ग्राम मात्रा की गोलियां पुराने गुड़ के साथ बना लें। 1-1 गोली दिन में 2 बार लें। इनका सेवन 45 दिन तक करने से बढ़े हुए जिगर के रोग में पर्याप्त लाभ मिलता है। इससे बढ़ी हुई तिल्ली भी ठीक हो जाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बस आज इतनी ही जानकारी। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: लीवर की समस्या और घरेलू नुस्खे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। संस्कृति भारती अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके रेडियो सेट पर होगा रात्रि 9:30 पर। गीत गाता चल ये कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा रात्रि 8 बजे। ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम है, हमें रहेगा आपके व्हाट्सएप पर फरमाइशों का इंतजार। कार्यक्रम का समय पुनः सुन लीजिए रात्रि 8 बजे। शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत हम आपको शोभा माथुर की गायी गजलें सुनवाएंगे। छांव बरगद की आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा श्री व्रजराम मौर्य को। प्रस्तुति असीम सक्सेना की होगी। कार्यक्रम का समय संध्या 7 बजे। शाम 6:20 पर किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आपके रेडियो सेट पर होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं कद्दू वर्गीय फसलों की देखभाल, साथ ही बरसात में सब्जियों की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर शिव शंकर केवीके ठाकुर द्वारा से एक भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। जैविक खेती आज की आवश्यकता है, इस विषय पर भी हम आपको जानकारी देंगे और मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है, इस विषय पर भी आप तक जानकारी पहुंचेगी। कार्यक्रम का समय है संध्या 6:20। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। आज शाम सुनना न भूलिएगा फिल्मी गीतों का ये कंपेयर्ड कार्यक्रम शाम 5 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30 पर। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 1:15 पर। गीत आपके नाम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 12:10 पर। ये कार्यक्रम ईमेल पर आधारित है और हमें रहेगा आपके फरमाइशी ईमेल्स का इंतजार। मनभावन आपके रेडियो सेट पर होगा सवेरे 11:30 पर। कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत आज सुनिएगा कहानी खंडरों की। आज हम आपको इसकी कड़ी संख्या 5 सुनवाएंगे। कार्यक्रम का समय ना भूलिएगा सवेरे 11 बजे। सुनहरा दौर में आज हम आपको सन 2011 से 2020 तक के गीत सुनवाएंगे सवेरे 10:30 पर। 10:05 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज राग भैरवी पर अवधेश कुमार गोस्वामी का ख्याल गायन सुनना ना भूलिएगा। 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू प्रोग्राम। ये कार्यक्रम आप तक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से पहुंचेगा। गौरव भारत देश के कार्यक्रम आप सुनिएगा सवेरे 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम की गौरव हैं प्रीति लता। 102.9 मॉर्निंग हिट्स आप सुनिएगा सवेरे 8:45 पर। सुनना ना भूलिएगा फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सवेरे 7:31 पर। लोक रंग के अंतर्गत आज हम आपको कनक सक्सेना के गाए लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण समय है सवेरे 7 बजे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसलकर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानि से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। गायक कलाकार हैं कनक सक्सेना। आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत आप सुन रहे थे कनक सक्सेना के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल और सड़क संकेतों का सम्मान करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, नशे की अवस्था में वाहन ना चलाएं, लेन अनुशासन बनाए रखें, पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें और सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखें। याद रखें, आपके घर परिवार के सदस्य आपकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा में हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता हेतु 112 डायल करें। 112 पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं से तत्काल सहायता उपलब्ध कराता है। संकट की घड़ी में घबराए नहीं, तुरंत 112 डायल करें।
1: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
2: अरे अरे एक्सीडेंट।
3: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
4: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
3: नहीं, 112 लगाओ।
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
3: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
6: हेलो 112।
7: नमस्कार, 112 यूपी
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
6: सुनील।
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
6: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: तो सुना आपने, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से अगला प्रसारण सुनिए।

0: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृहमंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो

0: कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जहां 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIRNews_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

क्यों ना एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें ऊंच नीच का जिक्र न किया जाए, क्यों ना एक ऐसी सोच कायम की जाए कि संकीर्ण मानसिकता की बात ही न आए, क्यों ना शख्सियत का आंकलन किसी के लिबास से न किया जाए, क्यों ना किसी की काया से ज्यादा उसके विचारों को तवज्जो दी जाए, क्यों ना रंगों की बात में काला या सफेद नहीं इंद्रधनुष ही याद आए, क्यों ना हर इंसान को बेहतर से बेहतरीन का रास्ता बताया जाए। कितना अच्छा हो अगर किसी की बीमारी, हार, पिछड़ेपन से इतर उसका साथ निभाने का मन बनाया जाए, तो देर किस बात की। चलिए सबका साथ निभा दुनिया में खुशी, उल्लास और आनंद बनाने का, बढ़ाने का एक वादा खुद से करें और निभाए भी, और एक वादा हमसे भी कीजिए। रोज सुबह सवेरे कार्यक्रम में मिलने का वादा, तो किया ना वादा। चलिए आपके इसी खूबसूरत वादे के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे के सभी श्रोताओं को रेणु यादव का स्नेह भरा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता गुन गुन नाता नमस्कार। श्रोताओं, माना जाता है कि पढ़ा लिखा समाज सशक्त समाज होता है, क्योंकि साक्षरता विचारों में विस्तार लाती है। किंतु दुख तब होता है जब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई बार हम अपनी ऊर्जा दूसरों की बुराई देखने में गुजार देते हैं। उसके रंग रूप, उसकी काया पर हमारा आकर्षण न जाने कब उसकी काया को देखकर जो शायद हमें पसंद ना आए एक टेढ़ी नजर में, आश्चर्य में या कटाक्ष में बदल जाती है। हम तो उसको देखकर या कुछ कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो उस आश्चर्य, उस टेढ़ी नजर या कटाक्ष को अपने जीवन में बसा लेता है, उसके लिए एक छोटी बात, एक छोटा आश्चर्य या एक टेढ़ी नजर जीवन भर का आत्मघात होती है, आत्मविश्वास को तोड़ देती है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आज 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस मनाया जाता है। क्या है ये दिवस और क्यों मनाया जाता है, वो जानने से पहले ये समझिए कि दुनिया में कुछ

ऐसे लोग भी हैं जिन्हें केवल अपने अलग दिखने के कारण भेदभाव, उपेक्षा और गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार समाज उनकी क्षमताओं को नहीं, बल्कि उनके रंग रूप को देखकर उनका मूल्यांकन करता है। ऐसे ही लोगों के अधिकार, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए हम आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाने का कारण ये है कि हम ये समझें कि एल्बिनिज्म एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति है, यानी रेयर जेनेटिक कंडीशन है, जो जन्म से होती है। इसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता तथा सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कुछ हद तक सुरक्षा भी देता है। एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों को प्रायः दृष्टि संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, तेज प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, आंखों में अनैच्छिक गति, भेंगापन तथा दृष्टि की तीक्ष्णता जैसी कमियां सामने आ जाती हैं। हालांकि उचित चिकित्सा परामर्श, सहायक उपकरणों और विशेष शैक्षिक सहायता के माध्यम से वे सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये सुविधाएं ना मिले तब तक क्या? क्या हमें ये अधिकार है कि हम किसी की काया को देखकर उसके विषय में आकलन करें? शायद यही सोचा होगा और तभी से दुनिया में कई देशों में एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और गलत धारणाओं का सामना होते हुए देखकर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस घोषित करने का फैसला लिया। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकारों संगठनों द्वारा एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। कई देशों में उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। यदि हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत में भी समानता, गरिमा और भेदभाव रहित जीवन का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। दृष्टि बाधा से जुड़ी चुनौतियों के आधार पर कुछ मामलों में उन्हें दिव्यांगजन अधिकारों से भी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। आज का ये दिवस भारत, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और अनेक यूरोपीय और एशियाई देशों में मनाया जाता है। श्रोताओं, इस बार एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 की थीम है प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स, अर्थात अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा रंगों का उत्सव। ये थीम हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान के साथ सम्मान का अधिकारी है। त्वचा का रंग, शारीरिक बनावट या कोई अनुवांशिक स्थिति किसी व्यक्ति की क्षमता, प्रतिभा या मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकती। विविधता ही मानव समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आइए हम एक वादा करें स्वयं से कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, एक ऐसे समाज बनाने की संकल्पना कल्पना करें जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके रंग रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों, प्रतिभा और मानवता से आंका जाए। सम्मान, समान अवसर और समावेशन ही संवेदनशील और प्रगतिशील समाज की पहचान है। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम खुशी से गा सकेंगे ये गीत। कौन सा? आइए साथ में गुनगुनाते हैं।

0: भी अच्छा अच्छा मगर दिल वाला चाहे गोरा चाहे काला है गोरा भी अच्छा काला भी अच्छा
1: श्रोताओं, अगर आपने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है तो हम बता दें कि आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, और आप कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आज है 13 जून 2026। आज वर्ष का 164वां दिन है, यानी साल को शानदार, यादगार और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास अभी भी 201 दिन शेष हैं। आज के इतिहास के पन्नों पर नजर डालने से पहले जानते हैं मौसम का हाल। आज रामपुर में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा या गरज चमक की संभावना भी बन सकती है। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि गर्मी के मौसम में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकें, हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें। और अब जानते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1940 में महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी माने जाने वाले माइकल ओ डायर को मारकर देशवासियों के आत्मसम्मान और न्याय की भावना को नई शक्ति दी थी। 2002 में अमेरिका और रूस के बीच मिसाइल रक्षा प्रणालियों की सीमित करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि की अवधि समाप्त हुई। इस घटना को वैश्विक सामरिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1923 में प्रेम धवन, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार, कवि और संगीतकार प्रेम धवन का जन्म हुआ। ऐ मेरे प्यारे वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे कालियाजी गीतों के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। 1944 में बान की मून, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून का जन्म हुआ। विश्व शांति, सत विकास और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर उनका योगदान व्यापक रूप से सराहा जाता है। 1964 में पीयूष गोयल, भारत के वरिष्ठ राजनेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जन्म आज ही के दिन हुआ। पीयूष गोयल ने वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा और रेल

जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिन्होंने आज हमें अलविदा किया। 2012 में मेहंदी हसन, विश्वख्यात गजल गायक, का निधन हुआ। उन्हें शाहजाए गजल के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कई गजलें आज भी संगीत प्रेमियों के बीच में उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी अपने समय में हुआ करती थी। 2016 में मुद्रा राक्षस, हिंदी के साहित्य और चर्चित लेखक, नाटककार और सामाजिक चिंतक, उनका निधन हुआ। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि मुद्रा राक्षस का वास्तविक नाम सुभाष चंद्र था। उन्होंने अपने लिए मुद्रा राक्षस नाम चुना जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस से प्रेरित था। यहाँ राक्षस किसी दानव का नहीं बल्कि उस नाटक के एक विद्वान, कुशल और प्रभावशाली पात्र का नाम है। अपने निर्भीक विचारों, सामाजिक सरोकारों और प्रभावशाली लेखन के कारण मुद्रा राक्षस हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

और श्रोताओं, एक मीत हमारा ऐसा होता है जो हमेशा हमारे हृदय के करीब रहता है, लेकिन हम उसे ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। पता है वो कौन है? वो है हमारा पर्यावरण। और इस मीत को हम अक्सर अक्सर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों क्यों नज़रअंदाज करते हैं? इसका जवाब तो हम सभी को पता है। हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, हम हर उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सुविधाजनक तौर पर हमारे सामने आ जाए और हमें उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, भले ही वो प्लास्टिक हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हों।

0: इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कचरा प्रबंधन ना करना हो, बहुत सारी ऐसी बातें। और ये अब चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के समूह ने चेतावनी दी है कि 2030 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आंकड़ों को पार कर सकता है। धरती को जलवायु संकट में बुरे प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में पेरिस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाएगा, लेकिन दुनिया इस आंकड़े के करीब पीछे ही छोड़ चुकी है। 2025 में औसत वैश्विक तापमान 1850 से 1900 के बेसलाइन औसत से लगभग 1.39 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका था। हमें ज़रूरत है कि हम इस वैश्विक आपातकालीन स्थिति को आने से ही रोकें। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहें से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक इसलिए क्योंकि प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और वर्षों तक पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषण बढ़ता है। प्लास्टिक कचरा नालियों और जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है। पशु पक्षी अक्सर प्लास्टिक खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेड़ों के कटान से धरती लगातार तापमान में वृद्धि और वृद्धि सहती जा रही है क्योंकि नदी, धाराएं, पेड़ और स्वयं धरती ये तापमान बोझ झेल नहीं सकती। इसलिए इस तापमान और इस बोझ को हमें ही झेलना होगा। इसलिए ये ज़रूरत है आज की कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें, उसको अपनी नज़रों के सामने रखें और प्यार से उसकी तरफ हमेशा देखें, उसका ख्याल रखें। और अब कार्यक्रम में मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: और उसके अंतर्मन की
2: ओह लवली, वेल डन,
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड,
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
7: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
8: आप कौन?
9: RBI कहता है
10: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
12: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
11: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
0: श्रोताओं, अब डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीय निशानेबाजी के वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले महान निशानेबाज और कोच जसपाल राणा अब हमारे बीच में नहीं हैं। उनका निधन केवल एक खिलाड़ी के जाने की खबर नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के एक ऐसे युग का अंत है जिसने देश में निशानेबाजी की तस्वीर बदल दी थी। उत्तराखंड से उत्तरकाशी से निकलकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक एक बड़ा मुकाम पाया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहचान बनाई और हमारे देश का नाम रोशन किया। हम सभी की ओर से जसपाल राणा जी को शत शत नमन। श्रोताओं, आज अखबार हमें ये भी बताते हैं कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बफर स्टॉक कार्यक्रम के तहत प्याज की खरीद मूल्य बढ़ाकर 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जो पहले 15.80 रुपए प्रति किलोग्राम था। ये संशोधित दर शनिवार से प्रभावी होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG 2026 के लिए शुक्रवार को कई कदमों की घोषणा की है, जिनमें रफ यानी कच्चे काम के अतिरिक्त जगह देने की और परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाना शामिल है। NTA के अनुसार परीक्षा अपरांत 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इस तरह अभ्यर्थियों को कुल 195 मिनट का समय मिलेगा। श्रोताओं, सरकार ने टीवी और रेडियो नियमों को सरल बनाने और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार यानी टेलीविजन, रेडियो और संबंध सेवाएं नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित मसौदे में ये प्रावधान भी शामिल किया गया है कि टीवी पर हर दिन 30 मिनट और रेडियो FM पर 1 घंटे तक राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक

प्रासंगिकता वाले विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करना अनिवार्य होगा। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के मध्य टीवी और ओटीटी को कम से कम 30 मिनट तक और रेडियो एफएम को 1 घंटे तक कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे। हितकर इस पर अपनी आपत्ति या सुझाव 27 जुलाई तक दे सकते हैं। और अब आइए रुख करते हैं रामपुर की ओर। श्रोताओं, यूपी पुलिस इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागी अब आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिसके तहत उनका फिजिकल टेस्ट और प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रमोशन बोर्ड ने इसके लिए तिथियां घोषित कर दी हैं। पुलिस लाइन ने ये टेस्ट 15 और 16 जून को होंगे, जिसमें कुल 132 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता प्री परीक्षा 2025 को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार 14 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्य प्रिय सिंह ने बताया कि जनपद में परीक्षा 6 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, जिनमें जवाहरलाल मेमोरियल नरोत्तम पांडे इंटर कॉलेज सिरसी, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज संभल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज संभल, राजकीय महाविद्यालय हयातनगर, जेडीयू इंटर कॉलेज सरायतरीन तथा हिंद इंटर कॉलेज संभल शामिल है। इन केंद्रों पर कुल 2656 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा एक पाली में सुबह 9:30 से 11:30 तक आयोजित होगी और परीक्षा में शामिल होने वाले सभी युवाओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप परीक्षा को बहुत ध्यानपूर्वक दें और उसको पास करें। जीवन में लक्ष्य बड़ा रखें और आगे बढ़ते जाएं। और अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

और अब कुछ शब्द युवा साथियों के लिए। युवाओं, आप वो हैं जो तूफानों से नहीं डरते बल्कि तूफानों की दिशाएं बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए आज की स्थिति परिस्थिति जो भी हो और यदि आप उससे संतोष नहीं रखते तो बिना रुके अपने सपनों को पाने के लिए जुट जाइए। सफलता 100% आपके कदम चूमेगी।

किसानों, जवानों और बुजुर्गों को नमन के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे को समाप्त करने की रेनू यादव को अनुमति दीजिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो ऐसा काम अवश्य कीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी दिल्ली से अगला प्रसारण सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों

0: के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
7: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for the bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
5: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
8: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruti, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
5: Defense Minister Rajnath Singh today congratulated Defense Research and Development Organization DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defense against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defense capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations' defense capabilities against different types of enemy threats. The passing out parade is being held today at the Indian Military Academy, IMA, in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
3: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished and is rooted in tradition and open to the world. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Through spiritual circuits and modern pilgrim amenities, India's civilization pride is being seamlessly revived. Among the key initiatives driving this transformation have been the Museum Grant Scheme and the Cultural Function and Production Grant Scheme. These schemes have helped preserve India's civilizational heritage by simultaneously encouraging cultural creativity and grassroots participation. Under the Museum Grant Scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talisman, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
9: 2016-17 Museum Grant established, we upgraded a new annexe. There we have set up Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the Museum Grant scheme, the one thing, most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
3: The Cultural Function and Production Grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instrument for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production following a fresh infusion of financial aid. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Solokhai Bam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
10: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received, this year we have received 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
3: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Ancient temples have been restored, holy places improved and old traditions brought back to life. At the same time, new roads, clean facilities and better services have made it easier for people to visit these places. People around the world are showing interest in India's way of life. Today, India's rich culture is not only shining at home but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest

36.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म दोस्ताना से। गायक कलाकार विशाल दादलानी, संगीत भी विशाल दादलानी का ही है। फिल्म का नाम हमने आपको बताया, दोस्ताना।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम का अगला गीत पापोन की आवाज में, संगीत अमित त्रिवेदी का, फिल्म का नाम है भावेश जोशी सुपर हीरो।

अभी आपने सुनी फिल्म जलेबी में जुबिन नौटियाल और फिल्म शिकारा में श्रद्धा मिश्रा और पापोन के गिले गाए गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं फिल्म मौसम इकरार के दो पल प्यार के साथ। गायक कलाकार अरमान मलिक और संगीत बपी लहरी का है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिग्रा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गणकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
2: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती
0: है। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
3: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की एक

0: 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाल सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
1: आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
0: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आम जन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपदवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश।

एक लेखिका क्रांतिकारी, प्रीति लता थी विस्मयकारी। आंग्ल क्लब जा गोरे मारे, आंग्ल शक्ति थी चोट करारी। गोली लगी न पकड़ी जाऊं, विषपान प्राण हर जाते हैं। अपने जीवन की ज्योत जला, जीवन ज्योतित कर जाते हैं। 1857 में झांसी की रानी के पश्चात कुमारी प्रीति लता ऐसी वीरांगना थी जिसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव कांड में क्रांतिकारियों की सेना से संघर्ष में दोनों ओर काफी आदमी मारे गए। क्रांतिकारियों के नेता सूर्यदा ने सोचा, ऐसे हमारी शक्ति जल्द ही क्षीण हो जाएगी, तो सूर्यसेन ने छापामार युद्ध का आदेश दिया। प्रीति लता और उनके साथी पहाड़ी से नीचे उतर ढलुआ जमीन पर तितर बितर हो गए। सूर्यसेन ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली से कैप्टन कैमरन मारा गया। सरकार ने सूर्यसेन की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए की घोषणा की। प्रीति और सूर्यसेन एक सहायक सावित्री के घर जा छिपे थे। सूर्यसेन ने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के क्लब में गोलीबारी से उन्हें मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और यह जिम्मेदारी सौंपी गई प्रीति लता को। उसने पोटेशियम साइनाइड अपने पास रखा था। क्लब में अंग्रेज नशे में चूर इधर उधर लुढ़क रहे थे। प्रीति ने साथियों से कहा, फायर। 13 अंग्रेज घायल हुए और क्लब में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। एक गोली प्रीति लता को भी लगी। साथ ही भाग निकले। जब खून निकलने लगा और बचने की कोई आशा न दिखी तो प्रीति लता ने साइनाइड खाकर देश को अंतिम प्रणाम कर लिया।

0: हौसलों की वो मिसाल थी, इनकलाब की पुकार थी। प्रीति लता भारत माँ का अमर श्रृंगार थी। कार्यक्रम गौरव भारत देश के में आज की गौरव थी प्रीति लता।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से उर्दू प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा।

मेरी इंतहाए निगारिश ही है, मेरी इंतहाए निगारिश ही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। सामीन बज़्म रामपुर रेडियो मरकज़ से

0: गालिब और मीर के मेयार पर आज अदब तख्लीक करने लगे
1: जी
0: तो अदब कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा।
1: जी
0: कि जो साहिब जबान है वो भी मजबूर हैं कि अपनी जबान को इतना आसान रखना है उन्हें कि आज का जो मेयार है तलबा का या
1: जी
0: कारीन का वो उसे बाकायदा समझ सके और उनकी जहनी तस्कीन हो सके। उस दौर में जहनी तस्कीन का मेयार और था, आज
1: आज
0: के
1: और
0: दौर में
1: है
0: जहनी तस्कीन का मेयार और
1: और
0: है।
1: है।
0: अदीब का फर्ज ये होता है कि वो जिन लोगों के लिए अदब तख्लीक कर रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: उनके जहनों तक रसाई हासिल
1: हासिल
0: करे।
1: कर सके।
0: अगर हम
1: जी
0: उस दौर के वो जो कदरें थी जबानी की
1: जी
0: उस उन कदरों को लेके आज अदब तख्लीक करेंगे। मिसाल के तौर पर उस दौर में जो सुरूर ने जो लिखी है फसाना जाए, अगर आज वो तहरीर राइज कर दी जाए
1: जी
0: तो कितने लोग उससे हद हासिल करेंगे। सिर्फ समातों तक की सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि वो बाकायदा मुकफ्फा और मुसज्जा जबान
1: हाँ
0: वो होगी, लेकिन आज मुकफ्फा और मुसज्जा जबान समझने वाले कितने हैं।
1: जी हाँ
0: लिहाजा हमारा अदीब जो है इस चीज को महसूस कर लिया था, सर सैयद ने भी और गालिब ने अपने खतूत में
1: अच्छा
0: सारी चीजें वहीं से उस मेयार से वो नीचे ले आए। मसलन हाल ही हमारे यहाँ बड़े रिफॉर्मर कहा जाए एक
1: अच्छा
0: मुसले,
1: जी
0: अदब के मुसले,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुकदमे शेर व शायरी में कहा है तीन चीजें बड़े अदब के लिए, आफाकी अदब के लिए, कि तफहुस से अल्फाज, कायनात का मुताल और परवाज तखील। ये तीन चीजें अगर किसी शायर या किसी अदीब के पास है तो बेहतरीन अदब
1: अदब
0: तख्लीक
1: तख्लीक
0: कर
1: कर
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है।
0: और इसी हवाले से मीर अनीस की अगर जिक्र करूं कि वो कह रहे हैं कि है कदी है मगर हुस्न है अबरू के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है गेसू के लिए, सुरमा जेबा है फकत नरगिसे जादू के लिए, जेब है खाले से है चेहरे गुलरू के लिए, दान दाकस के फसाहत व कलामे दारद, हर सुखन मौका वो हर नुकता मकामे दारद। तो वो जो हर सुखन मौका वो हर नुकता मकामे
1: हाँ
0: दारद
1: जी
0: वो उस दौर में अदब के जो तकाजे थे वहां थे,
1: वहां थे।
0: आज के जो दौर के तकाजे हैं वो यहां हैं।
1: लुबना साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस हवाले से आपकी क्या राय है? जैसा भी अरशद साहब ने बताया कि जो अदब आज है वो आज के तकाजे के तहत है, तो आज कैसा अदब होना चाहिए? थोड़ा सा पुराना रंग उसमें शामिल होना चाहिए।
2: आज देखिए ऐसा है ना, गैर मीर गालिब मोमिन की शायरी को सिर्फ आसूदी नहीं पढ़ते हैं हम, जो जमाने
1: जी
2: के हालात
1: जी
2: हैं हम जो सुन रहे हैं वही हमें लगता है कि हम ठीक है।
1: समीम, बहुत ही बेहतरीन अंदाज और ख्यालात अदब के हवाले से भी आपने समात फरमाए। हमारे इस मुबाहिसे के जो शुरका थे डॉक्टर अरशद रिजवी, मोहतरमा समना जुबैर और डॉक्टर लुबना हामिद, हम उन सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बेहतरीन ख्यालात से हमें नवाजा। मुख्तसर ये कि आज के और गुज़श्ता सालों के अदब में, यानी कल के अदब में, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, बस जो इंसान का मिजाज है उस मिजाज के हिसाब से दरअसल अदब जो है वो तख्लीक होता है।
2: अदब आज और कल, अभी इस अहम मौजू पर यह मुबाहसा आपने समाप्त किया। शुरुआत थे डॉक्टर अरशद रिजवी, डॉक्टर लुबना हामिद और मोहतरमा समना जुबैर, और आप सबसे महवे गुफ्तगू थी हमारी साथी मोहतरमा फायजा जुबैर। और सामीन, अब इसी के साथ ही अपनी मेजबान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज पर तैयार यह प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दें। अलविदा।
3: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:50 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग भैरवी पर अवधेश कुमार गोस्वामी का ख्याल गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आपने राग भैरवी पर अवधेश कुमार गौतम का ख्याल गायन सुना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। सवेरे के 10:05 हुए जाते हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

जहाँ भी रहें खुशियों की छांव साथ चलती रहे, जिंदगी हर मोड़ पर आपको खिलखिलाती मुस्कुराहट देती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के सभी श्रोताओं को रेणु यादव का स्नेह भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म खून का कागज से, गायक कलाकार अमित कुमार, अलका याज्ञिक और मनहर, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। परीमहल कासकन से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, गंज डुंडवारा से शमशुल कमर और मास्टर जाहिद अली, शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौला से इंतजार राही, शादाब राही, महताब निशा और सिकंदर राही, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ, वलीउल्लाह नूरजहाँ, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। ये खत हम तक आया है प्रमिलागंज आलोट जिला रतमाल मध्य प्रदेश से। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी, मीरा सरायू बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, बुलढाड़ा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं सहदेव दामोदर, शीशकला दामोदर, कुमारी साधना और सुमेत कुमार दामोदर, चांडूर विस्वा तालुका नांदुरा जिला बुलढाड़ा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खर्चे, रक्षाताई खर्चे, ललिता संजना, गणेश और कार्तिक खर्चे, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम खान, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जीतिक विरक और मीका विरक, डाबर तालाब सोनी से रजा अहमद, ईशान हुसैन, आरिफ हुसैन और मरियम, साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है पुशरा ने, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू सास्तरानी और हिना कौसर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट के हमारे ये श्रोता थे। और साथ ही मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिकलानी। करूला मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शुएब खां और नवेद खां। सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतुरेंगी से भागवत वर्मा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब, निशा, सिकंदर राही।

और साहिल अंसारी। बोरखेड़ा प्रमिला जिला उज्जैन से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह, दीक्षा और कुश मूढ़त। बेडरी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर। पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वीडी वडोदे और परिवार के सभी सदस्य। गरीब नवाज कॉलोनी बंदरा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। घाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा खान, सालिया शुएब खान, मुस्तबा खान, रऊफ और शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म स्वदेश से कल का याग्निक ने इस गीत को निभाया है। संगीत है ए आर रहमान का।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर का अगला गीत फिल्म जुर्म वंस अपॉन अ टाइम से। संगीत अनु मलिक, गायन अभिजीत अलका याज्ञिक और इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी की। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही महराज जहां ये ख़त्म तक आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दीदार रेडियो श्रोता संग बिलराम गेट कासगंज से हमारे श्रोता हैं एम असलम सैफी, जुबिन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंभाड़कर, सुरिता गंभाड़कर, सिद्धांत गंभाड़कर, प्रिंस एकांश गंभाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंभाड़कर, वैशाली गंभाड़कर, श्वेता सुमित गंभाड़कर और ध्वनि गंभाड़कर। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी और प्रकाशवीर राजपूत। डोंडी लोहारा बुलादर से कमलेश जयपुरिया। टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। दिल्ली मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। जिला मुरादाबाद संबल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आंचल, आकांक्षा, आकाश, आयुषी, आराध्या, नन्नू, दक्ष और छवि सैनी। अगली फरमाइश हम तक आई है जरूर वरुण महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं बाबा साहेब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनेरे और चंद्रप्रभा वडोदे। रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। शहबाजपुर कला कस्बा पाकवड़ा से मजहर हुसैन अंसारी, रईसा नाज, मुजक्किर बाबू और मजहर आसिम। साथ ही साथ इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुमैया महक। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं शिवांश कुमार, सुभाष, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दुष्यंत कुमार सिंगड़कर, वंदना धुले, अर्पिता और समस्त सिंगड़कर परिवार। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। मोहल्ला खेराड़वाड़ी तहसील जिला हिंगौली से शाहजी बोखड़े, नंदा बोड़खे, क्षमा कीजिएगा, शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी और बोड़खे परिवार। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंभाड़कर, श्रीमती सरिता गंभाड़कर, सिद्धांत गंभाड़कर, प्रिंस एकांश गंभाड़कर। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड से वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, संजना परी, मालती, स्वाति और प्रयाग चौधरी। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। विडूल उमरखेड़ महाराष्ट्र से गंगाथल पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मी पोपलवाड़, स्वरीत पोपलवाड़ और उत्तम जमधड़े। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। मथुरा रोड बहेड़ी से विनय गुप्ता, सरिता गुप्ता, अवंतिका, मयंक और माही। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हमारे पास खत आया है। लिखने वाले हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतमाल से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। करोला मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया और श्वेब खां। चनहटी बरेली, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। जिला झारखंड बड़ा बॉम्बे सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ता

इस गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके अनुरोध को समाप्त करने की रेनू यादव को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे एक दिन। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। सवेरे के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको 2010 से 2020 के मध्य के कुछ फिल्म हिट्स सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज हम आपको सन 2010 से 2020 के मध्य के कुछ फिल्म हिट सुनवा रहे हैं। अभी आपने सुना केदारनाथ में अरिजीत सिंह और निकिता गांधी का गाया गीत, और आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर को अमित त्रिवेदी के संगीत से सजे इस गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म लुटेरा से।

और आइए अब सुनते हैं पापॉन और मुरली ठाकुर की आवाज़ में ये संगीत से सजा गीत जो हमने लिया है फिल्म दम लगा के हईशा से।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक कहानी खंडरों की। आज सुनिए इस धारावाहिक की 5वीं कड़ी।
1: आकाशवाणी के लिए दमनिया इंटरनेशनल प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की।

0: कहानी खंडहरों की चौथी कड़ी में आपने सुना कि बाबा अजय, आशा और शन्ने मियां रोहिलखंड के खंडहरों को देखने के लिए रवाना होते हैं। बाबा रास्ते में मल्ला रामगढ़, भीमताल, नथवा खान और रुद्रपुर का इतिहास बताते हैं। ये लोग रोहिलों की राजधानी आंवला आते हैं, इमारतों और खंडहरों को देखते हैं। बाबा बताते हैं कि जब अवध के सूबेदार शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की फौज के साथ मिलकर रोहिलों को पराजित कर दिया था, तो उसने रोहिलों की हसीन इमारतों को तोड़ डाला था। आंवला के करीब ही एक जैन मंदिर है जहां पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी। ये लोग आंवला से शाहबाद आते हैं, जिसका इतिहास महाभारत काल की याद दिलाता है। यहीं पर राजा भूरो श्रवा रहा करते थे, जो पांडवों के हाथों मारे गए थे। यहीं पर दुर्योधन की बेटी लखना कुंवर रहती थी, जिनके नाम पर लखनौर गांव आबाद है। और यहीं पर लिलौर नाम का गांव है, जिसका नाम महाभारत में आता है। शाहजहां ने इसका नाम शाहबाद रखा था। राजा मदार शाह के वंशज आज भी शाहबाद में रहते हैं, जिनकी नौकरी सरदार दाऊद खान ने की थी। नवाब यूसुफ अली खान की बनवाई हुई कोठी शाहबाद आज वीरान पड़ी है। आज प्रस्तुत है पांचवी कड़ी।
1: अजय बेटा, आज हमारे सफर का आखिरी दिन है। हम रामपुर शहर जा रहे हैं, जहां हमारे आका सरदार दाऊद खान की औलादों ने 1749 तक हुक्मरानी की थी।
2: इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए ना।
1: मैंने बताया था कि आंवला रोहिलों की पहली राजधानी थी, जिसे दाऊद खान के लड़के नवाब अली मोहम्मद खान ने आबाद किया था। उसके दौरे हुकूमत में रोहिलों का सारे कठेर पर कब्जा था। 1748 में सिर्फ 44 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। कायमगंज के हाकिम नवाब कायम खां बंगश ने रोहिलों पर बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया।
3: कायम खां बंगश, यह भी तो पठान था बाबा।
1: हाँ, वो भी पठान था। उसके नाम वजीर सफदरजंग ने बादशाह से कठेर की सनद लिखवा दी थी। और जानते हो बेटा, ये साजिश थी सफदरजंग की। दरअसल बात ये थी कि दिल्ली और अवध के बीच रोहिलों और बंगश पठानों की हुकूमतें अवध के लिए खतरा थीं।
2: ओह, तो वो पठानों को आपस में लड़वाना चाहता था, ताकि उनके इलाकों पर खुद कब्जा कर ले।
1: वाह बेटी वाह, तुम भी सियासत को खूब समझती हो। जंग में कायम खां रोहिलों के हाथों मारा गया। कायमगंज और फरुखाबाद पर सफदरजंग ने कब्जा कर लिया। फिर कायम खां के भाई अहमद खां बंगश ने सफदरजंग को शिकस्त देकर दोबारा कब्जा कर लिया। सफदरजंग मर गया तो उसके बेटे शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की फौज किराए पर लेकर 1774 में रोहिलों को शिकस्त दे दी। सारे कठेर में लूट मार करता रहा वो।
3: बाबा, इसी ने तेरे रोहिलों की इमारतों को खंडहर बना दिया था।
1: हाँ, इसी की दुश्मनी ने रोहिलों को बर्बाद किया था। जंग में शिकस्त के बाद नवाब अली मोहम्मद खां का लड़का नवाब फैजुल्ला खां 20-25 हजार फौज के साथ लाल डांग चला गया। उस जमाने में लाल डांग गढ़वाल में था, लेकिन उस पर रोहिलों का कब्जा था।
2: बाबा, रामनगर से भी तो लाल डांग को रास्ता जाता है।
1: हाँ, जाता है। रामनगर, काशीपुर, ठाकुर द्वारा, ये सब इलाके रोहिलों के कब्जे में थे। और शुजाउद्दौला और अंग्रेजी फौजों ने रोहिलों की घेराबंदी कर ली। रोज फौजी झड़पें होती हैं, लेकिन रोहिलों ने हार नहीं

0: वाली है। खाने पीने की कमी और मच्छरों के काटने से काफी रोहिला मारे गए, बीमार हो गए। आखिर मजबूर होकर नवाब फैजुल्ला खां और शुजाउद्दौला को लाल डांग मुआहदा करना पड़ा। सारे कठेर पर शुजाउद्दौला का कब्जा हो गया। सिर्फ जिला रामपुर फैजुल्ला खां को मिला, और यह सन 1774 की बात है। हाँ
1: बाबा, उस समय रामपुर तो गैर आबाद इलाका होगा।
0: सिर्फ दो छोटे छोटे मामूली आबादी वाले गांव थे यहाँ, राजद्वारा और ठोटर।
2: तो इस शहर की नींव 1774 में रखी गई।
0: हाँ, 1774 में फैजुल्ला खां पहले नवाब हुए। और बेटा, एक हैरत अंगेज बात बताऊं तुम्हें?
2: बताइए ना बाबा।
1: हाँ हाँ,
0: दुश्मनी का फल कभी अच्छा नहीं होता। अवध की तारीख पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा, 1756 में अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था।
1: जी बाबा, उस वक्त वहां नवाब शुजाउद्दौला हकीम था।
0: लेकिन जिन रोहेलों को अवध के नवाबों ने बर्बाद किया, उनकी हुकूमत 1949 तक बाकी रही।
2: बड़ी अच्छी बात बताई आपने बाबा, दुश्मनी का अंजाम बुरा होता है।
0: बड़ी शान से की नवाबों ने हुकूमत। 1857 में जब दिल्ली और अवध की हुकूमतें बर्बाद हो गईं, तो रोटी रोजी की तलाश में हुनरमंद और संगीतकार, शायर और पढ़े लिखे लोग सब रामपुर आने लगे। और नवाब यूसुफ अली खान ने भी हुनरमंदों के बर्बाद काफिलों का दिल खोल कर स्वागत किया। अरे, ये कौन गा रहा है बेटा?
1: बाहर शन्ने मियां जी बहला रहे हैं बाबा।
0: हाँ, अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। अरे तो उन्हें यहाँ बुलाइए। हाँ बुलाइए बुलाइए।
2: जी बाबा। शन्ने मियां
0: शायद चार बैत गा रहे हैं। ये गायकी रोहेलों का लोकगीत है। तुम जानते हो बेटा, पहले ये पश्तो में गाई जाती थी, फिर बाद में रोहेला हिंदुस्तानी रंग में रंग गए।
3: सामान हमने गाड़ी में रख दिया है कुंवर साहिब।
1: चलिए

0: हजारों खंडहर बिखरे पड़े हैं कठेर के इलाके में। बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत वगैरह, लेकिन सब जगह पहुंचना मुमकिन नहीं। फिर भी तुमने अंदाजा लगा लिया होगा खंडहरों की तारीख लिखते वक्त कहां कहां जाना होगा।
1: मैं हर जगह जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो आपको भी लेकर जाऊंगा बाबा।
2: हमें आशा है बाबा, इस काम को हम जरूर पूरा करेंगे।
0: अच्छा बेटा, नवाब नजीबुद्दौला के इलाके में जरूर जाना, काफी इमारतें हैं वहां, किला, बारादरी, जामा मस्जिद, मकबरे। लेकिन अवध के सूबेदारों और मराठों ने बड़ी हसीन इमारतों को खंडहर बना दिया।
2: बाबा, रामपुर तो अभी काफी दूर है, तब तक रामपुर के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: हाँ बाबा,
0: बताता हूँ। जब इसे बसाया गया तो इसके 10 दरवाजे बनवाए गए। लीजिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला वक्त का, आ गया रामपुर। हाँ।
2: बाबा, ये तो बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल लखनऊ के चारबाग जैसा।
0: अरे नहीं बेटी, ये आम रेलवे स्टेशन नहीं है, नवाब साहब ने अपने लिए बनवाया था इसे। इसमें नवाब साहब का सलून खड़ा है, इसे लोग स्पेशल भी कहते हैं।
1: समझ में नहीं आई ये बात बाबा।
0: अच्छा, मैं समझाता हूँ। नवाब साहब आम रेल में सफर नहीं करते थे बेटी, उनके लिए खास किस्म के 4 डिब्बे इंग्लैंड से मंगाए गए थे। जब जाना होता था तो ये स्पेशल रेल में जोड़ दिया जाता था।
2: वाह, क्या बात थी सरकार की।
0: अगर हम सामने वाली सड़क से जाएं तो शाहबाद गेट से शहर में दाखिल हो जाएंगे, और अगर बाईं तरफ से चलें तो राहे रजा वाली सड़क से और नवाब गेट से होकर शहर में पहुंच जाएंगे। ऐसा करते हैं, बाईं तरफ से चलते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा, रास्ते में कोठी खास और बाग पैलेस भी देख लेंगे। हाँ।
1: अरे वाह, क्या हसीन सड़क है, सड़क के दोनों तरफ शानदार कोठियां। बाबा, आप उदास क्यों होंगे बाबा?
0: हाँ बेटा, ये सोचकर उदास हो गया कि कितनी आजादी मिल गई लोगों को। हाँ, इस सड़क का नाम राहे रजा है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ सायेदार पेड़ हुआ करते थे, सब गायब हो गए। अब देखो ना बेटा, कहीं सायेदार पेड़ों को भी काटा जाता है।
2: ये दर्द तो हमें सहना ही पड़ेगा बाबा। इधर देखिए बाबा, इतनी बड़ी जगह में कितनी शानदार कोठी है।
0: हाँ, ये कभी प्रिंसेस पैलेस था, नवाबी के जमाने में यहाँ शहजादे रहा करते थे। नवाब रजा अली खान ने इसे सेक्रेटरिएट बना दिया था, और अब ये कोर्ट है, फैसले होते हैं यहाँ मुकदमों के। और ये शिकस्ता गेट नौबत खाना है, सुबह शाम यहाँ नौबत बजा करती थी।
1: ये तो बाग है।
0: हाँ बेटा, ये बागात कोठी खास बाग का हिस्सा है, सैकड़ों एकड़ जमीन में फैले हुए हैं ये, और जानते हो इनका सिलसिला कोसी नदी से मिल जाता है।
2: ओह माय गॉड, कितनी शानदार कोठी है।
0: हाँ, और इसी कोठी में नवाब रहा करते थे।
2: बाबा बाबा, वो सामने,
0: वो, हाँ हाँ, वो हामिद मंजिल का गुम्बद है।
1: और बाबा, वो ऊंचे ऊंचे मीनार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऊंचे मीनार, अरे वो तो जामा मस्जिद के मीनार हैं। इतने बुलंद हैं ये मीनार और गुम्बद, दूर कोसी नदी के पुल से साफ साफ दिखाई देते हैं।
3: हाय अल्लाह कसम, कितना मजा आता अगर तू भी होती मेरी चुनिया।
2: अरे वाह, हम तो समझे थे कि शन्ने मियाँ सो गए, ये तो चुमनिया बी की यादों में खो गए हैं। हाँ
0: चलिए थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ जाते हैं। आहा अजय बेटा, तुम इसके फोटो ले लो जब तक, और शन्ने मियाँ को चुमनिया की यादों में खो जाने दो। नवाबों के जमाने में ये आम सड़क नहीं थी। नवाब कोठी बेनजीर, कोठी खुसरो बाग और किले में इसी रास्ते से आया जाया करते थे। लो आ गई कोठी बेनजीर भी। अल्लाह का शुक्र है अभी कोठी बेनजीर का गेट बाकी है। आओ अजय, आओ आओ आशा बेटी, आओ अंदर चलते हैं।
1: ये कोई बाग है बाबा?
0: ये कोठी बेनजीर का बाग है। चलो ठहर जाते हैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए।
2: वो सामने ढेर कैसा है बाबा?
0: ढेर हो चुकी है कोठी बेनजीर, और उधर कोठी बद्रे मुनीर भी खंडहर बन चुकी है। यहीं पर बसंती मेला लगा करता था, 10 दिन चलता था। क्या शान थी इस कोठी की, शायरों ने इसकी बड़ी तारीफ की है। और ये नहर तो बिल्कुल सूख चुकी है, हर तरफ झाड़ियां उगाई हैं। इसमें नवाब साहब का बजरा पड़ा होता था, और नवाब साहब उसमें बैठकर सैर किया करते थे। हाँ, और जानते हो बेटा, ये नहर उस सामने वाले फव्वारे से मिल जाती थी।
2: वाह, नवाब के जमाने में क्या सुंदर दृश्य होगा, और अब कैसी धूल उड़ रही है चारों ओर।
1: हर खंडहर की ऐसी ही कहानी होगी बाबा।
0: दुनिया की हर तहजीब की यही कहानी है बेटा। अब इन जंगली पेड़ों को देखो, कोई कह सकता है कि यहाँ 150 साल पहले गुलशिता था। हर तरफ लहलहाती घास और मुस्कुराते हुए फूल थे। वो आंखें भी नहीं रही जिन्होंने उसे देखा था, सिर्फ शायरी में इनका तस्किरा बाकी रह गया है। चलो अब खुसरो बाग चलते हैं।

0: बाबा, बड़ा हरा भरा इलाका है ये। सड़क के दोनों किनारे छायादार पेड़, हरे भरे आमों के बगात।
1: हाँ बेटा, इसी वजह से इसे ठंडी सड़क कहते हैं। और यहाँ भी घुड़सवारों का पहरा रहा करता था। अच्छा बेटा, जिस इमारत को हम देखने जा रहे हैं वो तकरीबन 200 साल पुरानी होगी। असल में ये नवाब का समर पैलेस था। इसके कमरे सख्त गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। काफी ऊंची ऊंची छतें हैं इसकी। खास बाग बनने से पहले नवाब गर्मियों में यही रहा करते थे और बरसात के मौसम में शाहबाद की कोठी में रहते थे।
2: हर मौसम का मजा लेने के लिए अलग अलग कोठियां थीं। वो गेट तो बहुत सुंदर है और वो सामने तो किसी किले की दीवार दिखाई दे रही है।
1: वो कोठी खुसरो बाग की बाहरी दीवार है और ये नवाब फैजुल्ला खां का मकबरा है, जिन्होंने 1774 में रोहेलों की इस बस्ती को बसाया था। हाँ बस बस बस, यहीं रुक जाइए जरा। हाँ
0: जी। बाबा, ये तो गवर्नमेंट रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है।
1: हाँ।
2: बड़ी आलीशान इमारत है बाबा, ये तो 2 मंजिला है।
1: हाँ।
0: कितने बड़े बड़े बाग हैं इसके चारों तरफ, और ये नहर

0: बड़ा आबाद शहर है, जीने का अंदाज नया भी है और पुराना भी।
1: हाँ, बस यही पुरानी आबादी की पहचान है। यहाँ तकरीबन हर रात को चार बैतें गाने की आवाज सुनाई देती है। बड़े जिंदा दिल लोग हैं यहाँ।
2: बाबा, यहाँ तो हर कदम पर मस्जिदें दिखाई दे रही हैं।
1: हाँ बेटा, शहर की 70% मुसलमानों की आबादी है, जबकि जिले में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 45% है। और वो देखो सामने, वो, हाँ, ये किले का राइट गेट कहलाता है। बस यहीं रुक जाइए।
0: माय गॉड, कितनी हसीन और शानदार इमारतें हैं किले में, वाह।
1: और बेटी, ये बुत देख रही हो ना, ये राइट साहब का है, इसीलिए इस गेट का नाम भी राइट गेट है।
2: कोई फॉरेनर आदमी थे राइट साहब?
1: हाँ, फ्रांसीसी इंजीनियर थे। किले की नई इमारतें इनकी देखरेख में बनी हैं। कई इमारतें पहले की बनी हुई हैं। दोनों की तर्ज तामीर में काफी फर्क है। और ये बाईं तरफ वाली जो इमारत देख रहे हो ना, ये अंग्रेजी मेहमान खाना थी और अब स्कूल बन चुका है।
0: बाबा, और ये सीधे हाथ वाली? अरे, ये तो गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है।
1: जानते हो बेटा, पहले इसमें नवाब की खास बेगम रहा करती थी। इसका नाम मच्छी भवन है। आओ अंदर चलो, देखते हैं।
2: वाह, कितनी हसीन इमारत है। और ये संगमरमर का तालाब, फव्वारे, गार्डन, वाह वाह।
1: और वो सामने बहुत सी महल सराए हैं, जिनमें नीचे दर्जे की बेगमात रहा करती थी। आइए आइए आइए, आगे चलते हैं।
2: ये छोटी सी इमारत तो बड़ी खूबसूरत है बाबा।
1: ये इमारत बड़ी खूबसूरत इमारत है। ये इसका नाम रंग महल है। इसकी तर्ज तामीर सबसे जुदा खालिस हिंदुस्तानी है। इसमें मौसिकी की महफिलें हुआ करती थी। जानते हो बेटा, उस्ताद मोहम्मद वजीर खां की बीन, अमीर खां की ध्रुपद, अयोध्या प्रसाद जी की पखावज और कालका और बिंदा दीन का कथक, ख्याल ठुमरी दादरा और बेगम अख्तर की गजल, कितने फनकारों के नाम गिनाऊं तुम्हें, ये सब यहाँ पर महफिलों की शान हुआ करते थे।
0: बड़ा शौक था नवाबों को संगीत का।
1: हाँ बेटा, नवाब अली मोहम्मद खान से नवाब रजा अली खान तक सब नवाब मौसिकी के शौकीन ही नहीं, खुद भी बड़े अच्छे मौसिकीकार थे, गायक भी थे और वादक भी। और ये है हामिद मंजिल। ईंट से बनी इमारतों में इतनी हसीन और आलीशान इमारत, ये नवाब हामिद अली खां का दरबार हाल था। जश्ने ताजपोशी पर इसे खूब सजाया जाता था, शादियाने गाए जाते थे। हाँ जय बेटा।
2: जी बाबा।
1: अरे बेटा, कणहरों की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अरे, अब हमें वापस भी तो चलना है। जिंदगी रही तो कठेर के बाकी खंडरों को फिर तलाश कर लेंगे।
0: बाबा, जी तो नहीं चाहता इस कहानी को अधूरा छोड़ने को।
1: मजबूरी है बेटी, उम्र भी तो नहीं जो लंबा सफर कर सके। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे और चलेंगे भी। सच तो ये है, हम अपने आका सरदार दाऊद खां से ज्यादा दिन जुदा भी तो नहीं रह सकते, और अपने शन्ने मियाँ
0: अपनी चुमनिया से जुदा नहीं रह सकते।
3: अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की पांचवीं कड़ी। इस रेडियो धारावाहिक के निर्देशक हैं राजेश तिवारी, सह निर्देशक संजय गिरी, लेखक नफीस सिद्दीकी। इस धारावाहिक के निर्माता हैं दमनिया इंटरनेशनल। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: कहानी खंडरों की। धरोहर के अंतर्गत आज आपने इस धारावाहिक की 5वीं कड़ी सुनी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
4: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
5: से नो टू प्लास्टिक।

फिल्मी गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।

0: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक ग्लास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
1: अभी लाई।
2: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का?
0: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
2: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। समय है मन भावन कार्यक्रम का।

गीतमाला कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो साथी अपर्णा का नमस्कार। अब कौन से मौसम से कोई आस लगाए, बरसात में

कहा जाता है प्यार करना तो आसान है, लेकिन जब वही प्यार बिछड़ जाए तो उसे भुलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान तो दूर चला जाता है, लेकिन उसकी यादें सदा के लिए बसेरा कर लेती हैं।

दिल में, और वो कभी भी दिल से दूर नहीं होती। ये यादें ही तो हैं जो बताती हैं कि उस जाने वाले की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत थी। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया।

कुछ तस्वीरें बाकी हैं अभी तक तेरी यादों की, ये दिल खाली ही नहीं किसी और के लिए। चाहा तो बहुत मिटा दूं इन तस्वीरों को, पर शायद ही मुमकिन नहीं आदमी के लिए। बेताब से रहते हैं तेरी याद में अक्सर, हम टूट के रोते हैं तेरी याद में अक्सर।

किसी की आमद से ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। मौसम के हर रंग को अपने अंदर समेट लेने को जी चाहता है। यूं लगता है मानो सारी दुनिया सिमटकर अपने आसपास आ गई हो। लेकिन वक्त कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। कोई अपना जो हमसे बहुत दूर हो जाता है, तब एक एक पल सालों के मानिंद लगने लगते हैं और फिर उसके साथ बिताए पल मीठी यादें बनकर यादों के झरोके में कैद हो जाते हैं। और जब भी जी चाहता है मन की खिड़की खोलकर यादों के इन परिंदों को थोड़ा सा अपने पास बिठाकर सहला लिया करते हैं।

फिर से जीता है। हराहट एहसास हमारा दिलाएगी, तन्हाई सी दिल पे तारी हो जाएगी। इतनी यादें हैं हमारी तुम्हारी जिंदगी में, कदम कदम पे याद हमारी तुम्हें आएगी।

खुली आज यादों की अलमारी तो दिखा, क्या खोया क्या पाया। टटोल के देखा जो यादों को दिल से, हर तरफ पाया बस तेरा हिसाया। गुजरे उन लम्हों के पन्नों में बस सिमट सी गई है जिंदगी। मानो ख्वाब है आज और सच है तू, मानो शाम हूं मैं और वक्त है तू। न समझूं गुजरता वक्त लिख रहा है फैसला कोई, या है आने वाले कल की दास्तान कहीं। न समझूं दूर होके भी कभी पास थे कितने, और आज पास होके भी दूर क्यों हैं इतने। सच में जब यादों की अलमारी खुलती है और यादों की छोटी सी गठरी मन के किसी कोने में पड़ी होती है, उसे खोला जाता है तो अपना बचपन, उससे जुड़ी यादें, जवानी के किस्से और अपने जीवन की बहुत सारी यादें जो एक सफ़र के तौर पर हमारे जहन में आ जाती हैं, वो हमारे लिए टॉनिक का काम करती हैं। कभी तो मन मायूस होता है, लेकिन कभी कभी मन को उमंगों से भी भर देती हैं। मन का ये कोना यादों के लिए हमेशा होना चाहिए।

खट्टी कुछ मीठी यादें। लेकिन दोनों का ही साथ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरह का स्वाद कभी कभी बदमज़गी भी करता है।

0: और अब आज के इस प्रोग्राम से दीजिए अपनी रेडियो साथी अपर्णा को इजाजत। नमस्कार।
1: एक भूला बिसरा गाना और एक बियर, वो भी उधारी वाली।
2: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC apply.

0: हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं।
3: आई फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
2: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा, खासकर पॉलीथीन, पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
0: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
0: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।

गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल ऑलवेज यूज 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम गीत आपके नाम।

प्रोग्राम के सभी सुनने वालों को अपर्णा का नमस्कार। उस वक्त इंतजार का आलम न पूछिए जब कोई बार बार कहे आ रहा हूं मैं। जी हां श्रोताओं, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होता है जब प्रोग्राम में हम इंतजार करते हैं आपके संदेशों का, आपके ईमेल्स का, और बहुत ही खुशी होती है कि इतनी शिद्दत के साथ आप सभी श्रोता हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, उसमें सहभागिता करते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छे गीत अपने इस प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो आज के प्रोग्राम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं पीएस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर, इन्हीं के साथ है मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष मोहिंकर, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और इनके साथ हैं सुदामा नगर खंडवा के हमारे श्रोता लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, सरगुजा मेनपाट से प्रभा डोमेन, प्रमिला डोमेन, आशा, निशा और समस्त डोमेन परिवार, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू, जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, मालवा रेडियो श्रोता संघ, ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से, आजाद रोड सनावत से मोहम्मद फारूक खत्री, मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद सिद्दीक खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद अदनान खत्री, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने, राजकोट गुजरात से फरमाइश आई है रश्मि झरना और भरत कुमार की, और ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। आप सभी के लिए अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज का गाया गीत, फिल्म है आदमी खिलौना है।

0: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सैनिक फिल्म का गीत अभी आपने सुना साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। ये गीत हमने किया था हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, जिला अमरोहा नई बस्ती बतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया अलीशा शकील, फहीम मोहम्मद, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, गई टंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवियम जैन, गांव कैरो जिला तरनतारन पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद और गुरशबद,

अहमदपुर खैगांव खंडवा के हमारे सुनने वाले हैं कैलाश फूलमाली, दीपक समर और वेदिका फूलमाली। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रिहान शेख। इन्हीं के साथ करोला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया और शोएब खान। सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अनिकेत दले। इन्हीं के साथ ऋषिकेश दले, जीविका, सानिका और पुणे से करिश्मा, अजय, अविका और विशाखा सोनवने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से। ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया के साथ मास्टर अल कबीर। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत, मयंक और इनके परिवार के सभी लोग। और तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख के साथ धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। आप सभी के लिए प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म है जान की कसम।

जान की कसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को विपिन सचदेवा के साथ फिल्म जुनून में। ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल खांगड़ा और तन्वी बोट। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। मोहल्ला मजार चांद शाम मियाँ रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर के हमारे सुनने वाले हैं फौजिया रोशनी, शाइना काजल और भाई शहजाद अली। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह और कृषि सिंह। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के हमारे सुनने वाले हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोकोरानी। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोटके। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

जुनून फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाजों में। और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राधे यादव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख, बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, फ्रेंड्स कॉलोनी करनार के हमारे सुनने वाले हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत कौर, मनविंदर सिंह पांधा, बलविंदर सोढ़ी और इन्हीं के साथ चंडीगढ़ से यश कुमार वर्मा, धाड़ी नांदोरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, यवतमाल विदर्भ से संतोष खटसे और विनोद खटसे, कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश हमारे और जिन श्रोताओं के नाम हमने की है वो हैं देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश और इनके परिवार के सभी लोग। आप सभी के लिए पेश है फिल्म दीवाना का गीत। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार सानू की।

साधना सरगम और कुमार सानू के गाए फिल्म दीवाना के इसी गीत के साथ आज का यह प्रोग्राम खत्म करने की अपर्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत आपके नाम। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये फरमाइशी प्रोग्राम। ये आकाशवाणी रामपुर है। दिन के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को

0: नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं।
2: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
4: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन,
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
1: श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। 2:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे आज शाम के साथ। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:15 पर। आज इसमें युवा साथियों के लिए आकर्षण होगा सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स।

कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:20। आज इसमें किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता, बरसात में सब्जियों की देखभाल। इस संबंध में डॉक्टर शिवशंकर से बात करेंगे केवीके। छांव बरगद की ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज शाम 7:00। आज इसमें श्री ब्रजराम मौर्य से बात करेंगे असीम सक्सेना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आज हम आपको सुनवाएंगे शोभा माथुर की गाई गजलें। रात 8 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम गीत गाता चल।

अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर। दिन के 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: महिला स्वयं से भी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में अहम तब्दीलियां देखी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नजर सानी शुदा औकात 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। नजर सानी शुदा इम्तिहान की मुद्दत में लाजमी इम्तिहान की रस्मी कार्रवाइयों के लिए दरकार वक्त शामिल है। और जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ समेत कर्बोजवार के अजला में तेज हवाओं और कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे अवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है और जायद की फसलों को फायदा हासिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का ख्याल जाहिर किया है। दरियासना उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो साथी अपर्णा का नमस्कार। श्रोताओं, हर बार की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। जो पसंद आप हमें बताएंगे, पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो गीत हम आप तक पहुंचा सकें। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध हमारे सभी श्रोताओं से। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे श्रोता हमारे इस फ़ोन इन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और लगातार कोशिश में भी लगे रहते हैं, और ऐसे में उन्हें बड़ी मायूसी होती है जब हमारे कोई भी श्रोता एक से ज़्यादा बार कार्यक्रम में कॉल करते हैं, दो बार अपने गीत की फरमाइशों को पूरा करवाते हैं। और आप हमारी मजबूरी भी समझते होंगे कि यहाँ हर चीज़ को व्यवस्थित करते हुए, मैनेज करते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ये पता लगा पाना कि कौन से श्रोता दोबारा हमें कॉल कर रहे हैं, नाम बदल के कॉल कर रहे हैं। तो आज बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश हमारे सभी श्रोताओं से कि कार्यक्रम में ज़रूर भाग लीजिए, अपने पसंद का गीत भी ज़रूर सुनिए, लेकिन दूसरे श्रोताओं को भी मौका दीजिए। तो देर न करते हुए लेते हैं आज की पहली कॉल। हेलो फरमाइश। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी अपर्णा।
1: अपर्णा जी नमस्ते।
0: नमस्ते, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: दीदी पक्का से बोले पम्मी।
0: पम्मी जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गाना है साई फिल्म का, मुझे लोगों का मान है दीवानी।
0: जी हाँ, आपके

0: ईद की फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे।
1: आपके मैं सुबह शाम तक प्रोग्राम सुनता हूँ आपके, बहुत
0: बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे श्रोता ही हैं जिनसे हमें उत्साहवर्धन होता है कि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। और कौन है जो आपके साथ ये गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं बताता हूँ, मैं पेंट का काम भी करता हूँ, मिस्त्री काम भी करता हूँ। मैं पेंट का काम कर रहा हूँ अपने घर मोहल्ले में
0: जी।
1: जल्दी से आ मेरे ना, मैं कॉल नहीं लगा, कॉल लगी दो बार।
0: चलिए आज आपकी कॉल प्रोग्राम में लग गई है तो हम आपकी पसंद
1: दोनों नाम ले लूं
0: जी।
1: जी गांधी समाधि हरी कप्पाल जी हैं, करोड़ सभा परवीन है, फारूक बाएं सीके वाले पक्के पुल पे से, और आप और मैं वो अमा पारा से मनीषा दीपिका।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो मैडम जी, आदाब
0: आदाब।
1: जी। दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खंडी एक मीनार वाली मस्जिद के पास शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी
0: शबनम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। दीदी आप बताइए, आप कैसी हो? परिवार में और स्टाफ के लोग सब कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे से हैं। आकाशवाणी परिवार में भी सभी लोग अच्छे से हैं। ये बताइए आप कैसी हैं?
1: दीदी हम बहुत अच्छे हैं और इस टाइम हमारा काम अच्छा चल रहा है। पार्लर में बैठे हैं और आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज प्रोग्राम में फोन किया है, कौन से गीत की फरमाइश है?
1: दीदी फिल्म का नाम होगी प्यार की, उसका कोई सा भी सॉन्ग चलेगा। दीदी दो नाम है जैसे संग में हाजी का फारका, शमा परवीन और शाहरुख अंसारी, सभी श्रोता वाले।
0: आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइए
0: जी, हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले आपको प्यार भरा आदाब।
0: आदाब।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: दानिश साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम, आपका जो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज है बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी आप गीत आपके नाम प्रोग्राम में थी, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण लगा और गीतों का चयन बहुत ही अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भी गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं वो उन्हें पसंद आएं।
1: आकाशवाणी रामपुर केंद्र से जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं सभी उद्घोषक पेश करते हैं। आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और आकाशवाणी रामपुर केंद्र हमारा फेवरेट केंद्र है।
0: जानकर बहुत खुशी हुई। और आज फोन किया है तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है जीना तेरी गली में और गीत के बोल हैं तेरे हम ए सनम। ये सॉन्ग सुनवा देना, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी हाँ,
1: जैसे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, ग्राम खेड़े से मोहम्मद कामिल मकसूद भाई हैं, बहार हुसैन सिद्दीकी हैं और हमजा सिद्दीकी हैं, गुलशन साहिबा हैं और ये कांट रोड लदावली मुरादाबाद से भाई अजीत कसाना और राजवीर यादव।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सभी साथियों के साथ अब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश। सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
1: गफ्फार साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी शिद्दत के साथ आप हमारे प्रोग्राम सुनते भी हैं और

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश।
1: फरमाइश।
0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, हमारी कौन सी श्रोता बात कर रही हैं?
1: मैं मोहल्ला पंचायत कॉलोनी तहसील स्वार से प्रिया बात कर रही हूँ।
0: प्रिया जी, कैसी हैं आप? शायद इस प्रोग्राम में हमारी और आपकी पहली दफा बात हो रही है।
1: पहली दफा बात हो रही है आपसे। हमारे
0: जी
1: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और दिल ढूंढता है। प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, उन्हें बहुत शौक है आपके रेडियो के सारे प्रोग्राम सुनने का।
0: बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आकाशवाणी रामपुर के कार्य

0: कार्यक्रमों को आप सुनते हैं और सराहते हैं, तो आज
1: बहुत इंटरेस्टिंग से सुनते हैं मेरे हस्बैंड।
0: बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आज आपने कार्यक्रम में फोन किया है तो कौन से गीत की फरमाइश है?
1: ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मूवी नेम तो मैम मुझे याद नहीं है।
0: यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो,
1: हाँ,
0: किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है और फिल्म का नाम रोटी है।
1: इसको हस्बैंड सुनना चाहते हैं, और शिवाय विजय राठौर जी, मेरे हस्बैंड, और शिवाय राघव शिवांशी।
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम आपकी पसंद पहुंचाते हैं आप तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: आदरणीय मैडम जी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। मैडम
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैडम आपके कार्यक्रम सब सुनते हैं, गीत आपके नाम अनुरोध गीत गाता जी सभी सुनते हैं, अच्छे लगते हैं रवि वगैरह
0: जी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनते रहेंगे।
1: मैडम

0: आज
1: ये प्रेम कहानी का दोनों के जीवन नजर ना आए एकदम दरिया में
0: जी जरूर
1: आप और सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए।
0: ठीक है, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमारी कौन सी श्रोता हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम काशीपुर से शबनम भी बात कर रही हूँ आपसे।
2: हेलो
0: शबनम।

0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा गीत सुनेंगी? हेलो
1: मैम, आप कैसी हो?
0: हम अच्छे से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे से होंगे।
1: जी हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मैम। मैम, फिल्म का नाम है अंदाज़। अब कोई भी गाना सुनवा देना, कुछ सुनने वाले हैं
0: जी।
1: ये है रामपुर से सायरा भी, अनम भी, लाइबा काजमी, आप और हम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, मैं एमडी आदाब।
0: आदाब,
1: मैं जिला रामपुर ग्राम पंचायत से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद कामिल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: आज फोन किया है तो कौन से गीत की फरमाइश है?
1: मैम फिल्म का नाम है बादल और गाने के बोल हैं तुझे देख के दिल मेरा डोले, इसी तरह के गाने के बोल हैं, ये सुन सुनवा देना। और मेरे साथ में सुनने वाले मैम मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने साथियों के साथ सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
0: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले

0: कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत।

ज़मीन आसमान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। अब सुनते हैं आरडी बर्मन को फिल्म ज़माने को दिखाना है में।

की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

से। अब सुनते हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म यादों की बारात में।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4

आशा भोसले, किशोर कुमार और आरडी बर्मन के गाए फिल्म महान केसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। दूसरी सभा में शाम 5 बजे इन्हीं मीटरों पर आपसे पुनः भेंट होगी, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें यह सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दत्रेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुझे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं। समेलाल घीवर, युवांश, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज़।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: कमन चाहे गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
3: मन चाहे गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी?
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही

0: लेती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनि के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का

यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र राष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं।
0: मैं?
1: धृतराष्ट्र।
0: ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूं।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच। ओह, असहनी है ये सच।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर किया है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता,

0: महाराज ध्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज

0: मिलते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार को, बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर,

0: लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झनकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: हाँ
1: है ना,
0: करेक्ट, आर डी
1: आर डी
0: बर्मन,
1: बर्मन साहब का।
0: हाँ
1: और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट
1: वही ताजगी है, जबकि
0: करेक्ट
1: वो उनकी साज से निकले होंगे।
0: करेक्ट
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना और
0: हाँ
1: फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूं
0: हाँ
1: आपने।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था,

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतर मालिक को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही,
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हम हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है. क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम

0: गाने, या ऐसे इन फिल्मों के गाने पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोच कर, या साहिर लुधियानवी के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा फिल्म,
0: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग यू नो डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो।

0: जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, मतलब कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी, जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है,
0: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज़्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो आप जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन होती है।
1: आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम ज़बरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानियाँ के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में

0: मैं एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से, कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं।

0: कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है, और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते
0: करेक्ट
1: हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया, वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वो वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी
0: दिखती है।
1: दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज

ठीक है, अच्छा ये पॉस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं. ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो कि परफेक्शन. तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब. आकार ओके इज

0: No, sir, Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं आप.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं, और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जमे बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनकी संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वॉज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी. वेर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम सुन रहे सभी साथियों को आपकी आज की होस्ट कम दोस्त यानी कि प्रियंका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सी चीजें हम पहली बार करते हैं। पहली बार स्कूल जाना, पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार खुद की कमाई हाथ में लेना। लेकिन एक पहली बार ऐसा होता है जो हमारी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पेज होता है। जी हाँ, पहला प्यार और उसकी खट्टी मीठी यादें। वो पहला प्यार जो शायद कभी पूरा हुआ, शायद कभी अधूरा रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में वो आज भी उतना ही फ्रेश है जितना सुबह की पहली ओस की बूंद। ये एक ऐसी फीलिंग है जो जब पहली बार दिल को छूती है तो प्यार, खुमार, इंतजार, दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है।

पहला प्यार, वो चोरी छुपे देखना, वो बिना बात के मुस्कुराना और दिल की धड़कन का मेट्रो की रफ्तार से बढ़ जाना, वो कॉरिडोर में उसका इंतजार करना, एक जैसी नोटबुक्स खरीदने का बहाना और गलती से अगर आंखें मिल जाएं तो पूरे दिन का बन जाना। सच बताएं तो प्यार में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। पहले प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि यह बहुत मासूम होता है, क्योंकि इसमें प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, वो एक पूरे दौर से होता है। वो खुद से प्यार करना सिखाता है। हम आईने के सामने ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, गानों के लिरिक्स समझने लगते हैं और अचानक हम शायर भी बन जाते हैं। इसी बात पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जानी है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और पहली मोहब्बत में तो बिना कुछ कहे ही सब कुछ सुन लिया जाता है। दोस्तों, भले ही वक्त के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं, लेकिन वो पहली बार वाली फीलिंग होती है ना, वो दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है। वो कहते हैं ना, पहला प्यार चाहे मुकम्मल हो या ना हो, लेकिन कभी भी नाकामयाब नहीं होता।

0: और इसी गीत के साथ मुझे यानी कि आपकी आज की रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्ष,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, उमंग और उत्साह के साथ सुन रहे होंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों,
1: आज दिन है शनिवार, और हर शनिवार की तरह आपके और हमारे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में हमें रहता है आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। हमारे श्रोता साथी, हमें फ़ोन इन में जुड़ने के लिए नोट कर लीजिए हमारा ये नंबर। हमारा नंबर है 0595232436। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0595232436।
0: तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की।

0: के सवाल के साथ। अब आज का हमारा सवाल है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
1: सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए हमें अपना सही जवाब। सवाल का सही जवाब और जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: खुशी, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बाल, त्वचा और आंखों का रंग सामान्य लोगों से काफ़ी हल्का होता है। कई बार लोग इसके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं। वास्तव में ये एक चिकित्सीय स्थिति है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है।
1: बिल्कुल हर्ष, एल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी के संपर्क में आने से फैलता है। ये एक अनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन पिगमेंट कम या बिल्कुल नहीं बनता। यही मेलानिन हमारी त्वचा, बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है।
0: बिल्कुल खुशी, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने वर्ष 2014 में 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी, जिसका उद्देश्य था कि एल्बिनिज्म में से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए, उनके प्रति भेदभाव को समाप्त किया जाए और समाज में जागरूकता फैलाई जाए।
1: एल्बिनिज्म वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जिससे उन्हें सनबर्न और त्वचा संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्हें दृष्टि संबंधित कठिनाइयां भी हो सकती हैं।
0: इसके साथ ही एल्बिनिज्म वाले लोगों को कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, जैसे धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का उपयोग करना, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, टोपी लगाना और नियमित रूप से आंखों और त्वचा की जांच करवाना।
1: लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एल्बिनिज्म किसी व्यक्ति की प्रतिभा, बुद्धिमता या क्षमता को प्रभावित नहीं करता। वे भी हमारे जैसे ही सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, दुनिया भर में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने एल्बिनिज्म के बावजूद शिक्षा, कला, खेल, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: उनकी सफलता हमें ये सिखाती है कि किसी व्यक्ति का रंग या रूप नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और प्रतिभा उसे आगे बढ़ाती है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति सम्मान, समान अवसर और सुरक्षित जीवन का अधिकार रखता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार है आपके लिए बहुत कुछ खास।
2: चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप फिर से जुड़ गए हैं अपने फेवरेट शो युवाणी में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है आज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही उनके छोटे भाई से कम चर्चित हो, लेकिन देश की आजादी के संघर्ष में उनका योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं गणेश दामोदर सावरकर जी की, जिनको लोग प्रेम से बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आज है उनकी जयंती।
1: गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। वे बचपन से ही राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत पोत्र थे। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और देश भर में स्वतंत्रता की चेतना धीरे धीरे आकार ले रही थी।
0: दोस्तों बाबा राव सावरकर जी ने युवाओं में देश प्रेम और संगठन की भावना जगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर के साथ मिलकर मित्र मेला नामक संगठन को आगे बढ़ाया, जो बाद में अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करना था।
1: उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज सरकार बेहद चिंतित रहती थी। वर्ष 1909 में उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उन्हें अनेक कठिनाइयों और यातनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों और संकल्प से समझौता नहीं किया।
0: दोस्तों गणेश दामोदर सावरकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग, साहस और समर्पण में दिखाई देती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों और सुविधाओं को राष्ट्र हित के लिए त्याग दिया। उनका पूरा जीवन भारत माता की सेवा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा।
1: साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे वीर सेनानी रहे जिनका योगदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बाबा राव सावरकर भी उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने युवाओं को संगठित करने, उनमें आत्मविश्वास जगाने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने का कार्य किया।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारा कर्तव्य है जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान से हमें यह अमूल्य स्वतंत्रता दिलाई। गणेश दामोदर सावरकर का जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, साहस और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता है। दोस्तों कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
4: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की तरफ और आइए जानते हैं हमारे पहले श्रोता साथी कौन से हैं। हेलो,
5: हेलो फ्रेंड।
4: हाँ जी, नमस्कार।
5: नमस्कार, मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिर अफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
4: जी कैसे हैं आप?
5: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार में और युवानी परिवार में क्या हाल है?
4: जी हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आकाशवाणी परिवार में भी सब कुशल मंगल है।
5: और एक गाना सुनना चाहूंगा, मूवी का नाम है राम लखन।
4: जी
5: गाने के बोल है मुझे तुमसे हैं कितने गिले, कुछ सुनने वालों के नाम हैं।
4: जी बताइए।
5: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, नवाबुद्दीन, इकराम अली प्रेमी, मकसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, शानूर अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, गुलच्चा इदरीसी, आकाश रस्तोगी, पम्मी पक्के बाग से, यही सब सुनना चाहेंगे।
4: अच्छा ठीक है, चलिए आपको हम सुनवाते हैं आपके फरमाइश का गीत।
5: शुक्रिया,
4: धन्यवाद।

0: चलिए जानते हैं अब हमारे अगले कौन से श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के पास पड़ता है फरुखाबाद जिला।
0: जी जी जी।
1: और मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ आकाशवाणी रामपुर के अंदर से, और बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम वाड़ी, और सारे प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं, फन प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, और किसान वाड़ी भी अच्छी लगती है, और महिला वाला प्रोग्राम आता है 12 बजे का, वो भी अच्छा लगता है। सारे प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं, और प्रादेशिक समाचार हैं और रेले होते हैं तो आपके केंद्र से, तो प्रादेशिक समाचार बहुत जानकारी मिलती है, और प्रोग्राम में दिल्ली से समाचार आते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, और क्यों गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपना ख्याल रखें, सभी लोग कहीं भी जाएं तो तौलिया उलिया चांद पे रखना रखे जाएं, तौलिया उलिया कहीं मोरेसा बांध के जाएं, और जैसे प्याज कटाओ प्याज को रखे में तो उससे लू नहीं लगेगी,
0: जी
1: और
0: जी जी
1: बारिश का मौसम आ गया तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी कछो बाको मौसम को दस्तक देने लगी, क्योंकि ठंडा मौसम होने लगा।
0: जी जी जी। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: और जो गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम दो दो बोल कह के हम तुम्हारे हैं, और गारा दाका संगम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, और क्यों ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए इस मौसम में, कि ककड़ी है खरबूजा कलिंदे इनका सेवन करना चाहिए, कि मौसमी फल चल रहे हैं अभी तो, फिर आम भी आम की सीजन चल रही तो आम का आम खाना चाहिए थोड़ा।
0: जी जी जी।
1: और जैसे रीठा वगैरह है, जो जामुन जामुन वगैरह हैं वो भी चल रहे हैं मार्केट में और गाँव में चल रहे हैं ऐसे।
0: चलिए जी, बहुत खूब कहा आपने।
1: ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, कहीं भी रखना है तो पक्षी डाल घर पे तो कहीं घड़े छोटा सा कोई कटोरा वगैरह हो तो उसमें रखना चाहिए पानी भी, तो पक्षियों बेजवान रहेंगे तो उनको भी पानी रखना चाहिए।
0: जी चलिए, सुनवाते हैं आपकी पसंद का आपको ये गीत।

0: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले श्रोता साथी की तरफ। नमस्कार
1: जी। नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम बढ़िया हैं, आकाशवाणी परिवार में भी सब बढ़िया हैं। बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: जी, फिल्म का नाम है क्रिश, और गाने के बोले कोई तुमसा नहीं।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: जी मैं बताऊँ आपको, मैं मोबाइल एक्सप्रेस कार्यक्रम सुन रहा हूँ
0: जी।
1: फिलहाल मैं झालावाड़ राजस्थान में हूँ, और कार्यक्रम देता हूँ एमपी में, और कार्यक्रम सुन रहा हूँ रामपुर उत्तर प्रदेश के।
0: बहुत बढ़िया
1: जी, यही तो आकाशवाणी का नेटवर्क भी ऐसा हो रहा है मोबाइल एक्सप्रेस पे आने की वजह से कि हम हर राज्य में हर कार्यक्रम को किसी भी समय सुन सकते हैं।
0: जी जी
1: जी, और हमारे इसमें काफ़ी दोस्त बन चुके हैं आकाशवाणी के साथ, रामपुर से हैं
0: जी,
1: और हमारे दोस्त हैं भगवान सिंह शर्मा, लोकल।

0: तुकाराम जाधव, आशुतोष अविनाश संगीता जी, ये सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं।
1: बढ़िया जी, आइए आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइश का गीत। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।

0: चलिए जानते हैं अगले श्रोता साथी कौन हमसे जुड़े हैं। हेलो फ्रेंड।
1: अस्सलामुअलैकुम सर।
0: जी कौन श्रोता साथी बात कर रहे हैं हमसे?
1: मैं मोहल्ला बारादरी महमूद रामपुर से, रामपुर का।

0: पता भाई रफत साहब, बदकरौल सर जी युगवाणी के रोजाना प्रोग्राम सुनते हैं और सारे प्रोग्राम हम पसंद करते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप?
0: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल हैं?
1: जी हम भी बहुत सही हैं, आकाशवाणी परिवार में भी सब बहुत बढ़िया हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं गर्मी से बचाव के?
0: चलिए, इस गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो ठंडी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे तरबूजा है, खीरा है, या खाने में सलाद का सेवन अवश्य लें। और देखने में आ रहा है कि लू बहुत तेज चल रही है बाहर सड़कों पर, यानी कि बहुत गर्म हवा है,
1: जी
0: तो
1: जी।
0: बाहर यानी कि अगर निकलें तो कपड़ा वपड़ा डाल कर सर पर निकलें,
1: जी जी
0: जी, लू से बचने के लिए
1: जी।
0: यही सब बचाव हैं गर्मी के।
1: जी बहुत खूब कहा आपने। तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: सर जी मैं गीत जरूर सुनूंगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ आपको।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: सर जी, आपके केंद्र से युवाणी में खास करके सभी प्रोग्राम हैं
1: जी,
0: फोन इन कार्यक्रम भी है, पत्रों पर आधारित जो चिट्ठी आई है प्रोग्राम होता है वो भी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं आपके यहाँ, लेकिन फरमाइश पत्रों पर या SMS पर कोई प्रोग्राम नहीं है आपके यहाँ से, ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करें?
1: जी जी बिल्कुल, हम इस पे जरूर ध्यान देंगे, जैसा आपने कहा है हम बात करेंगे और जरूर इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे।
0: सर जल्द से जल्द ये प्रोग्राम शुरू करिए, क्योंकि पत्रों पर आधारित पहले आता था प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता था।
1: जी जी जी
0: तो आज मेरी कॉल लगी है युगवाणी कार्यक्रम में, तो एक फिल्म है नगीना
1: जी,
0: उसी फिल्म में एक गाना है, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया,
1: जी जी
0: तेरा हो गया तूने वादा किया, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पटवाल की आवाज़ है, और मेरे परिवार के कुछ लोग हैं, अगर आपकी ज़रा सा नाम बोल सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये सबसे पहले मेरे सईद भाई, मेरे बड़े भाई हैं सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी हैं, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई हैं, सिस्टर फिरोजा मुस्कान, और मेरी वाइफ हैं नगमा नाज मंसूरी, साथ ही बहारुल हसन सिद्दीकी और हनीफुर रहमान जी।
1: जी जी चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, रामपुर आकाशवाणी में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: आइए दोस्तों जानते हैं हमारे अगले श्रोता साथी कौन से हैं। नमस्कार। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्ते। जी बताइए कैसे हैं आप।
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं। और दीदी इस वक्त हमारे यहाँ तूफान और बरसात बहुत ज्यादा हो रही है दीदी।
0: जी और बताइए आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे।
1: दीदी फिल्म का नाम है दिलवाले और भक्ति के बोले सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप।
1: हाँ दीदी, अविनाश जी हैं, आशुतोष जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, तारुण अंसारी जी हैं, इन सब का साथ सुनना चाहेंगे दीदी। और राजन गंगवार जी और सभी के साथ
0: जी बिल्कुल आपके फरमाइश का सॉन्ग आपको सुनाते हैं हम। धन्यवाद।

0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। हर शनिवार हमसे जुड़ने के लिए आप 0595-2324-326 पर कॉल कर सकते हैं और हमारे हेलो फ्रेंड सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो साथियों ये थे हमारे आज के सेगमेंट। तो अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब को जानने का। हमारा आज का सवाल था, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही जवाब है 1961। आइए जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब।
1: दर्पण कुमार सैनी, जगदीश धाकर, पुंजाजी नवकर, नानक खन्ना, धर्मेंद्र छिपा, अजीत कसाना, जॉन डे कैस्ट्रो, हिरामणि वर्मा, फरियाद हुसैन अंसारी, दिनेश वर्मा, आरसी कामड़े, नजमुल हुदा जावेद, नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, कैलाश फुलमली, नाहिद खान, राष्ट्रपाल गजबिये, गंगा सिंह रावत, भाई रफत साहब, विजय सुरालकर, राजवीर सिंह यादव, रामकुमार रेवर, अरविंद कुमार, फागुराम यादव, संजय डिंगिया, मोहम्मद कालीम अंसारी, सिद्धार्थ गोंडने, बीपी गौतम, राधेश्याम पांडे, गजानन येले दरियापुर, प्रवीण चौहान, बीएल धाकर, सुनील पाठक, उदयबन पाल, गुरमीत सिंह मीता, अजीत बावसर, सोहन जोशी, सतीश रघुवंशी, अनोखे लाल, विथल सुरोशे, जाकिर मंसूरी, नारायण लाल साहू, मोहम्मद सईद अब्बासी, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद आमिर अंसारी, हनमत शिंदे, मसरूर हसन, इरशाद अहमद, आसिफ चौधरी, विनोद मुन्नत, चौधरी राजवीर सिंह, शाहजी बोडके, शाहरूर नूर अंसारी, शकील अहमद इदरसी, धीरज भाई राबरी,

0: मोहम्मद यासीन अंजन, नितेश कुमार देवनगन, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, आमिर हुसैन, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लाल मोहम्मद अंसारी, रवि रस्तोगी, उत्तम सिंह जंघेल, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद जाहिद अली, हाजी गफार खान, अनिल बी गोटके, जिशान वर्सी, अरविंद कुमार, आकाश रस्तोगी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, मुकेश कश्यप, उमेश कुमार गौर।
1: तो आप सभी श्रोता साथियों को सवाल का सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901।
0: आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410086876।
1: आप हमसे ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। आप एक बार स्पेलिंग सुन लीजिए, patramilaairampur@gmail.com। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए उमंग, नए विषय और नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी हर्ष को
0: और अपनी रेडियो दोस्त खुशी का
1: दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 6 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही क्षणों में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देशभर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज व FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कुछ गुमशुदा सूचनाएं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये आवश्यक संदेश।
2: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
1: गुमशुदा सूचनाएं। पहली सूचना हमारे पास है प्रभारी निरीक्षक थाना चंदौसी जिला संबल सूचित करते हैं कि देव भारती पुत्र ब्रज किशोर निवासी मोहल्ला मारवाड़ी कस्बा व थाना चंदौसी जनपद संबल विगत 29 अप्रैल 2026 से लापता हैं। देव भारती की उम्र 18 वर्ष, गेहुआ रंग और कद 5 फीट 6 इंच है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना चंदौसी जिला संबल मोबाइल नंबर है 9927216613। इसके अलावा आप इस पते पर भी सूचित कर सकते हैं 9454404035। अगली गुमशुदा सूचना है प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संबल सूचित

करते हैं कि सोनी पत्नी हरी सिंह निवासी रहटोला थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संबल विगत 9 मई 2026 से लापता हैं। सोनी की उम्र 21 वर्ष सांवला रंग और कद 4 फीट 6 इंच है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संबल मोबाइल नंबर 9454404058। अगली गुमशुदा सूचना है प्रभारी निरीक्षक थाना असमोली जिला संबल सूचित करते हैं कि साइस्ता उर्फ नाजिश पत्नी मोहम्मद शफीक उर्फ वकार निवासी ग्राम ओबरी थाना असमोली जनपद संबल विगत 1 मई 2026 से लापता हैं। साइस्ता की उम्र 30 वर्ष कद 5 फीट 4 इंच और चेहरा सामान्य है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना असमोली जिला संबल संपर्क हेतु नंबर है 9454404029। गुमशुदा सूचनाएं समाप्त हुईं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 6:10 हुए हैं। पेश है कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दबंग से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से। इस गीत के गायक कलाकार हैं जावेद अली और साहिर अली बग्गा।

इसी गीत के साथ अपने कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आपके रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आपने सुने कुछ फिल्मी गीत, कार्यक्रम था चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी रामपुर है, 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनन वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को आपके भैया हरदेव की
1: और आपके भैया पंकज की
0: राम राम। और सुनाओ पंकज भैया, का चल रहा है?
1: भैया बढ़िया है। और भैया देखो गर्मी का मौसम चल रहा है भैया।
0: हाँ,
1: और जब मौसम में हम सबको बहुत मतलब सही रहने की आवश्यकता है,
0: ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: क्योंकि
0: और हमारे जो किसान भाई बहन खेतन पर जाकर इस समय काम कर रहे हैं,
1: जी भैया,
0: क्योंकि काम की बात करें हम तो धान की जो पौध की है,
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: बाकी तैयारी हमारे किसान भाई कर चुके हैं,
1: जी भैया,
0: बहुत सारे किसान भाई ने धान की पौध डाल दी है,
1: जी भैया,
0: है ना भैया?
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: और बाकी बात जो है धान रोपाई की तैयारी शुरू हो गई।
1: हाँ,
0: तो खेत की जो तैयारी भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: हाँ भैया, हम तो भैया हमने अपने खेत की तैयारी कर ली भैया,
0: कर ली, बहुत अच्छी बात है। तो खेती के साथ साथ हमें अपनो ध्यान रखना जरूरी है,
1: जरूरी भैया,
0: क्योंकि हम जब खेत पर जाटेंगे तो भैया अंगोछा ले जाएं, क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत तेज, है ना भैया? और साथ में एक पानी की बोतल,
1: जी
0: है ना,
1: हाँ,
0: बहुत ले जाना जरूरी है,
1: जरूरी भैया,
0: क्योंकि समय समय पर अगर हम पानी पियत रहेंगे तो हमारे शरीर में पानी कमी ना हो भाई,
1: जी
0: है ना,
1: हाँ,
0: हीट वेव भी चल रही है,
1: हाँ भैया,
0: है ना, तो बासु ध्यान रखना जरूरी है,
1: जी, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे भैया, हाँ, तभी हम खेती वाली काम सही से कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी खेती बाड़ी को ध्यान अच्छी तरह से रख पाएंगे,
1: जी भैया,
0: और अपने परिवार को ध्यान सही तरीके से रख पाएंगे,
1: जी भैया।
0: तो जो तो बात रही भैया अपनी खेती बाड़ी संबंधित, और भी हम बात करेंगे, तो आज की पंकज भैया हमारी चर्चा को मुख्य विषय का है वो
1: भैया, आज की जो चर्चा को मुख्य विषय है ना,
0: हाँ,
1: वो है कद्दू वर्ग की फसलें।
0: अच्छा,
1: हाँ भैया,
0: जिनकी देखभाल हम किस तरह करें?
1: हाँ भैया, यानी लौकी, तोरई,
0: हाँ,
1: करेला, खीरा, तरबूज,
0: ककड़ी है भैया जहाँ,
1: हाँ भैया,
0: ककड़ी, पेठा, टिंडा और परवल,
1: जी भैया। और हरदेव भैया एक चीज है,
0: हाँ,
1: ये वो फसलें हैं ना,
0: हाँ,
1: जो 60 दिन में जेब भर देती हैं हमारे किसान भैया की,
0: यानी कि नगद आमदनी वाली फसलें हैं,
1: ठीक भैया,
0: हाँ,
1: तो क्योंकि भैया लौकी तुरई जो हमें गर्मी में हमारे हैं,
0: हाँ,
1: और खीरा को प्रयोग हम सलाद में करते हैं भैया,
0: अरे बिका ठीक है भैया, बाजार में खीरा बिक रहा है, और भैया दाम भी बिक रहा है,
1: और भैया बात करें प्याज बुझाने की चीज, तो भैया वो तरबूज है,
0: अरे बाकी तो भैया बात अलग है, अब देखते हैं हम कि तरबूज हमारे शरीर में पानी की कमी ना होने देता,
1: हाँ, क्योंकि भैया जामा होत का है ना, जो कम दिन में तो तैयार ही आती है भैया, और अगर हम मचान दे देंगे ना, तो वास्तव क्या होता है कि हमारी जो जगह है वो भी कम घिरेगी और ज्यादा पैदावार होगी, और भैया मंडी में रोज बिकती है, और भैया ताजी ताजी आमदनियां हमें, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और इस समय हमारे किसान भाई बहन हैं वो इनकी देखभाल में लगे हुए हैं,
1: जी भैया,
0: और करनी चाहिए देखभाल,
1: हाँ, देखभाल
0: नगद आमदनी की फसल,
1: हाँ,
0: है ना,
1: क्योंकि
0: अगर देखभाल हम ना करेंगे तो भैया नुकसान हो सकता
1: है,
0: तो बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं जो तेजी से बढ़ती हैं,
1: हाँ भैया,
0: है ना भैया,
1: हाँ,
0: इनकी जो लताएं हैं खेत में तेजी से फैलत हैं, और इस समय देखी जाए तो खेत की निगरानी और उचित प्रबंधन बहुत ही जरूरी है,
1: जी भैया,
0: भैया
1: जी भैया,
0: बात करें हम शुरुआत से तो फसल को ध्यान जो है शुरुआत से रखो जाए, है ना
1: जी,
0: रोग और कीट को प्रकोप जो है काफी हद तक अगर हम कम कर सकते हैं अगर शुरुआत से हम ध्यान रखेंगे,
1: जी भैया। और भैया देखो इस समय जो गर्मी मौसम चली रही है, अगर हम बात करें सिंचाई की भैया,
0: हाँ,
1: तो देखो इस समय इन फसलों को नियमित नमी की आवश्यकता होती है,
0: बिल्कुल भैया,
1: है ना भैया,
0: हाँ,
1: खेत में ना तो, और जो है खेत में ना तो पानी अधिक भरना चाहिए,
0: हाँ,
1: क्योंकि और ना ही मिट्टी को पूरी तरह सूखना चाहिए,
0: बिल्कुल आपने सही बात कही,
1: संतुलित सिंचाई जो है ना भैया वो पौधों की वृद्धि और फल बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है,
0: बिल्कुल भैया आपने सही बात कही पंकज भैया, जाके साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए,
1: हाँ,
0: और व्यवस्था अच्छी हम तभी रख पाएंगे जब हम फसल करने से पहले अपनों खेत इकसार करा,
1: हाँ,
0: तो वो बहुत जरूरी,
1: वो
0: है,
1: बहुत जरूरी,
0: आप
1: है,
0: कोई फसल करें तो अपनों खेत इकसार करा लें,
1: हाँ,
0: जो है बारिश के समय में और जब हम पानी लगावे तो जल भराव की समस्या ना होती है, हमारी लागतों कम आती,
1: लागत कम आवे,
0: जल जब कम लगेगो,
1: हाँ,
0: तो लागत कम आ गई, है ना भैया,
1: जी भैया,
0: और पानी जो है वो ठहरत ना है गो, जिससे जड़ों में सड़न की समस्या जो उत्पन्न हो सकती है वो ना होती है,
1: जी भैया,
0: है ना भैया,
1: जी,
0: जिससे पौधे हमारे जो है कमजोर, अगर देखो पानी भर जाएगो तो पौधे जो कमजोर ही जाएंगे, और बरसात के मौसम में विशेष रूप से देखिए तो भैया हमने देखिए कि कुछ जगह पानी भर जाते हो तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती है,
1: जी,
0: तो जल निकास की व्यवस्था जो है अच्छी होनी चाहिए,
1: जी भैया। और भैया देखो जाके अतिरिक्त ना जो मेन जो बात है वो खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी है,
0: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि अगर खरपतवार फसल के साथ जो होता है ना वे पोषक तत्व उनके पानी और प्रकाश भी सबके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ते हैं, है ना। तो इसलिए समय समय पर भैया निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि वे फसल को पर्याप्त पोषण मिल सके।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, अगर हम अपनी फसलन को जो है निराई गुड़ाई करते रहेंगे
1: जी,
0: तो वहां जो खरपतवार उग रहे हैं वे पोषक तत्व तो ले रहे हैं जमीन से,
1: हाँ वही
0: तो जिससे हमारी लागत जो जा रही है वो उन्हें खरपतवार को चली जाती है,
1: चली जाती है।
0: इससे अच्छा हो कि समय पर निराई गुड़ाई करके और उनको खेत से बाहर निकाल फेंके ताकि हमारी जो मुख्य फसल है बाको पोषक तत्व मिल सके, है ना भैया
1: जी। भैया
0: और निराई गुड़ाई करने से जो है हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है वो। इसके अलावा जो बेलों के आसपास मिट्टी चढ़ाने को कार्य है साथियों, बामू मजबूती मिलती है, है ना, और नई नई जड़ें निकलती हैं
1: भैया
0: अगर हम खरपतवार जो है निकालते रहेंगे खेतन से
1: तो सही बात है। और भैया पोषक तत्व की बात करें ना, तो जो कद्दू वर्गीय हमारी जो फसलें होती है उनको संतुलित उर्वरकों की आवश्यकता होती है ना भैया। और खेत में अच्छी जो सड़ी हुई गोबरी खाद होती है ना, प्रयोग करने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है, साथ ही बाकी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास को संतुलित उपयोग पौधों की अच्छी वृद्धि और जो फलन में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही पंकज भैया, हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं लगातार अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वे महंगी हैं। इससे अच्छा है कि गांव में हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं पशुपालन करते हैं, तो वहां से हमें जो है सड़ी हुई गोबर की खादों मिल जाती है, इकट्ठी मिल जाती है ट्राली के साथ। और अब तो जो पल्ला भरन से अच्छी है कि आपने देखी हुई कि रेता बजरी के भी चलते हैं भरन वाले, है ना, तो वे 100 रुपए ट्राली भर देते हैं भैया, वे सस्ते में निपटा देंगे।
1: हम तो देख रहे हैं गांव में बैग को प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं,
0: वो अब हाइड्रोपंप मोटर वासे वो जेसीबी टाइप को होता है वो 100-150 रुपए लेता है और पूरी ट्राली गोबर की भर के 10 मिनट में भैया वो एकदम हमारे किसान भाई को एकदम समझ लो मौजा मौज है। अब तो पल्ला से गोबर भरने की ज्यादा दिक्कत तो ना है, है ना
1: जी,
0: मशीन भर रही है। तो वो देसी खाद अगर हमारी फसलन को जो है करण से पहले अगर हम खेत में डाल दें तो भैया हमारी जो मिट्टी की ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है और लगातार बनी रहती है काफी समय तक। तो गोबर की सड़ी हुई खाद को प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तो हमारे किसान भाई जो हैं बाको गोबर की सड़ी हुई खाद को प्रयोग करें जिससे उनकी मिट्टी जो है उत्तम हो भाई
1: जी भैया,
0: है ना भैया।
1: हाँ भैया, और भैया देखो ये जहाँ मैं एक चीज की और ध्यान देंगे कि जो कीट और रोग प्रबंधन की बात करें ना भैया, तो कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे फल मक्खी है, लाल कद्दू बीटल है, माहू जैसे कीट जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: है ना भैया, तो इनकी नियमित निगरानी जरूरी है ताकि समय रहते बाकी नियंत्रण हम कर सके।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, फल मक्खी के नियंत्रण के ताई जो है खेत की साफ सफाई जो है बना रखना बहुत जरूरी है, है ना भैया। और जो हमारे प्रभावित जो भी फल हैं तो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और खेत से निकाल के दूर फेंक देना चाहिए। और भैया फेरोमैन ट्रैप जो है लगाना चाहिए जो काफ़ी प्रभावी है
1: जी
0: हमारे किसान भाइयों को। और इसी प्रकार जो रोगग्रस्त अगर पौधा आपको दिखाई दे जाए और पत्तियों से जो है उन्हें हटा कर नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें निकाल कर जो है कुहाड़ कर फेंक देना
1: चाहिए जिससे कि विभाग संपर्क में ना आवे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो वो खत्म हो जाए। और भैया देखो कई बार फसलों में चूर्णी फफूंदी, मृद रोमिल फफूंदी जैसे रोग भी दिखाई देते हैं, इन रोगों की शुरुआत होती है कृषि विशेषज्ञ जो हमारे हैं ये दवाई की दुकान पे, हम उनसे सलाह लें और उचित प्रबंधन को अपना लें हम भैया। तो खेत में वायु संचार अच्छे रहने से भी रोगों की संभावना जो होती है वो कम होती है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, हम कोई भी दवा को प्रयोग करें तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर
1: जरूर लें,
0: है ना भैया।
1: हाँ
0: और वरना आकाशवाणी के माध्यम से कृषि जगत के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को लगातार जो है खेती बाड़ी संबंधित सलाह दी जा रही है, बाको प्रयोग करें।
1: और भैया अगर उनकी कोई समस्या होती है तो हमारा जो प्रोग्राम आता ना कृषि शंका समाधान, हमें पत्र लिख कर या हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख कर भेज दे, समस्या समाधान में तुरंत पा ले।
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात कही, जाके साथ साथ जो है समय समय पर पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मिलती रहती है,
1: मिलती रहती
0: है ना भैया
1: जी। भैया
0: तो और बात करें हम जो फूल और फल बनन की, विशेष समय ध्यान रखना चाहिए कद्दू वर्गीय फसलन
1: जी भैया,
0: है ना भैया। इस अवस्था में पौधों को पर्याप्त नमी और पोषण मिलना भैया बहुत ही जरूरी है
1: जी भैया।
0: और यदि इस समय पौधों पर किसी प्रकार को कोई तनाव आता है तो भैया बाप जो उत्पादन होता है वहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
1: जी,
0: तो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है भैया।
1: तो भैया हम तो अपने किसान साथियों से हृदय भैया जय कहेंगे कि जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं या फसलें कोई भी सही बाको हमें नियमित रूप से अपने खेत को बार बार देखना चाहिए, रोजाना खेत पर जाना चाहिए। और कोई भी अगर समस्या दिखती है तो वो समस्या अगर शुरुआत में हम देख लें और बाको तुरंत उपचार कर लें तो भैया वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, समय पे हमें हमेशा अपने खेतन को देखनो, अपनी फसलों को देखनो बहुत जरूरी है। जाके साथ साथ भैया एक बात हम भूल रहे हैं, खेत की देख, जैसे अपनी फसल हमने लगा रखी कद्दू बरगी, जो फसलें हमारी लगा रखी हैं, तो उनकी देखभाल के साथ साथ जैसे जो छोटा जानवर होता है,
1: हाँ भैया,
0: बाघ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाइयों को हम देख रहे हैं कि कटीले तार लगा देते हैं, बेना लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हमारे देखो पशु प्रेमी, देखो देखे जाए तो बहुत है हमारे, हम पशु प्रेमी, पशु पालते तो पशु प्रेमी है
1: ना भैया,
0: पशु के जो साथ साथ देखो हम पशु में बहुत सारी चीज मिलती है, दूध मिलता है ना,
1: मक्खन, दूध,
0: घी, सब चीज मिलता है। और हमारे जीवन में जैविक खाद, गेहूं जो उसकी गोबर की खाद
1: जी
0: है ना, अनमोल है, देखी जाए तो
1: जी अनमोल है,
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सस्ती है और बहुत ही उपयुक्त है हमारे खेतन ताई। तो जाके ताई भैया जो है हमें अपने ऐसी व्यवस्था अपने खेत को करना चाहिए कि चारों तरफ कटीली तार ना लगा के रस्सी बांध
1: देनी चाहिए,
0: और रस्सी बांध कर थोड़ी बहुत जो आपने देखी मटका टांग देते हैं भूत बना के,
1: हाँ,
0: खेत के बीच में,
1: हाँ, वो लगा दे,
0: वो लगा
1: दे, चमकीली पन्नी जो होती है ना, हाँ, बाकी चारों तरफ।
0: अच्छा हमने देखी भैया, पंकज भैया कुछ हमारे किसान भाई बहुत ही एक्टिविटी वाली होता है,
1: हाँ,
0: पे थरिया में ना,
1: हाँ,
0: जब वो एक ऐसा सिस्टम बना देता है कि वो टन टन बोलती है,
1: हाँ,
0: हवा चलती है,
1: हाँ,
0: तो आवाज करती है थरिया,
1: तो जो वहां से जंगली जानवर भाग जाता
0: है, वहां से जो पक्षी है जो हमारे, हाँ, नुकसान पहुंचातेंगे हमारे, हाँ, जो फसल जो है वहां में, तो बेहू उड़कर चले जातेंगे, और वो भूत बनी हुई जो मटकिया होती है वहां से देख के भैया देखो रात के समय जल्दी कोई घर खेत में घुसत ना है वो, और जानवर जो सोचते कोई ना कोई खड़ो है ना, तो वे हमारे खेत से दूर
1: रहते हैं।
0: तो जो प्रयोग हमें देखी तो हमारे पहले के भैया जो हमारे करते, आज भी हमारे बहुत सारे किसान भाई करते हैं, जो बहुत बढ़िया तरीका है, हमारे पशु को नुकसान ना हो भाई और हमारे खेत की देखभाल हो जाए। तो इस तरह हमारे जो किसान भाई बहन हैं वे अपने कद्दू वर्गीय फसलन की देखभाल कर सकते हैं और अच्छो मुनाफो अपनी फसलन से ले सकते हैं। और

0: भैया,
1: हाँ
0: जिस प्रकार भैया देखो गर्मी का मौसम चल रहा है
1: हाँ
0: और जिस प्रकार हम अपने सेहत की देखभाल कर रहे हैं
1: हाँ
0: और अपने खेती की भी देखभाल कर रहे हैं,
1: हाँ
0: तो ऐसी तरीका से हम इसी से संबंधित मतलब हम अपने पशुओं की देखभाल, जो नवजात हमारे पशु हैं उनको हम देखभाल कैसे करें, इसी से
1: हाँ
0: संबंधित हम अपने किसान साथियों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जाको विषय है गर्मी में नवजात पशुओं की देखभाल कैसे करें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंशुल रहेल जी। तो साथियों आप सुने जो भेंट वार्ता।
2: सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर अंशु राहल मैम, जो कि प्रोफेसर हैं पशु पोषण विभाग में। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: मैम, हमारा जो आज का विषय है वो है ग्रीष्म ऋतु में नवजात पशु शिशु की देखभाल। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि जो गर्मी होती है, गर्मी में हमारे पशुपालकों को किन सावधानियों को मद्देनजर रखना चाहिए।
3: किसान भाइयों, जैसा हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, इसी प्रकार हमें अपने जो जानवर हैं उनके बच्चों की भी देखभाल करनी जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये जो नवजात हमारे पशु के बच्चे हैं, अगर उनकी शुरू से ही देखभाल नहीं करेंगे
2: जी,
3: तो आगे जाके जो वो दूध उत्पादन देते हैं वो बहुत प्रभावित होता है
2: जी।
3: और जन्म से लेके 4 से 6 माह तक का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए जो चाहे कोई भी मौसम हो उसमें ध्यान देना आवश्यक है
2: जी।
3: और जो दुधारू पशु होते हैं, सबसे ज्यादा जो रोग वगैरह होते हैं और मृत्यु पाई जाती है वो इसी दौरान पाई जाती है। और अगर किसी कारणवश आपका पशु का बच्चे का देहांत हो जाए तो उसको आगे जाके आपको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है
2: जी।
3: इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे समय में बच्चों को जो बाह्य वातावरण है उसके भी अनुकूल बनाना पड़ता है। और इसीलिए छोटे बच्चों की देखभाल जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में। आपने देखा होगा कि गर्मी तो होती है, साथ में जो गर्म हवाएं चलती हैं वो भी हमको तो प्रभावित करती हैं और साथ में हमारे जो जानवर हैं उन पर भी असर डालती हैं
2: जी।
3: और इस वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये जरूरी है कि अपने जो पशु के बच्चे हैं उनके शरीर में पानी की कमी कभी न होने दें
2: जी।
3: और अगर स्वास्थ्य बिगड़ता दिखे तो उसको फौरन ही चिकित्सा उपलब्ध कराएं। अक्सर नमी के कारण वर्षा के साथ बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का भी प्रकोप होता है, वो बढ़ जाता है
2: जी।
3: और साथ ही जो उसकी खाल की बीमारियां होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे हम बच्चे को जन्म से पालते हैं, जो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है कि बच्चे की उम्र जो मृत्यु दर है वो बढ़ी रहे और साथ ही उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न ना हो
2: जी।
3: और इसीलिए हम लोग को ये ध्यान देना है, खासकर कि हमारा पशु दुख परेशानी है उससे हमको उसको दूर रखें
2: जी।
3: इसके अलावा ऐसे समय में ही गर्मी के जो शुरुआती दिन होते हैं, ऐसे समय में आपको जैसे कुछ पशुओं के बच्चों का सींग का विहीनीकरण भी करना पड़ सकता है और साथ में जो नाभि के इन्फेक्शन है, करीब 15 से 20% तक इस तरह के इन्फेक्शन पशुओं में पाए जाते हैं
2: जी।
3: ऐसे में गर्मी हो चाहे सर्दी हो, दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रबंधन कर रहे हैं उनके खान पान का, वो खान पान गुणवत्ता युक्त हो और उसकी वजह से आपके पशु बीमार ना पड़े। और इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पशुओं का आवास का प्रबंधन तो करें ही, साथ ही उनके खाने पानी का भी प्रबंधन करें, साथ ही पशुओं को कैसे संभालना है उसका भी ज्ञान आपको होना चाहिए और आपको पशुओं को कब खिलाना है और कैसे खिलाना है ये भी जानना बहुत जरूरी है
2: जी। मैम ये तो रही सावधानियाँ, अगर हम बात करें पशु प्रबंधन या आहार प्रबंधन की, तो आहार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए?
3: देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, खासकर जो हमारी जो दुधारू पशु होते हैं, तो उनका जो पाचन तंत्र होता है बच्चे का, वो एक आरोमांति पशु के समान होता है
2: जी।
3: और उसमें जो हमारे चारे होते हैं उनको पचाने की क्षमता नहीं होती है और ऐसे में जो भी आप खाना दोगे वो एक तरल पदार्थ के रूप में दोगे। और खासकर ऐसे में ज्यादातर हम या तो उसको दूध देते हैं या फिर दूध के उत्पाद देते हैं
2: जी।
3: और दूध में जो दूध हम देते हैं वो मुंह से सीधा ही उनके पेट में जाता है और वहीं पे जाके वो अपने पोषक तत्व पशु को प्रदान करता है
2: जी।
3: और वहीं पे वो जो किण्वन क्रिया है वो चलती रहती है। अब ऐसे में जो भी आप पशु को दूध देते हैं, देखिए दूध से ही पशु का बढ़वार तो मिल नहीं सकती, तो 15वें दिन से आपको पशु के आहार में थोड़ा सा ठोस आहार, जिसको हम काफ

0: बच्चों को आगे जाके अनेक बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा चीज में कई सारे गुणवत्ता युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे कि इसमें जो आपका विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इनकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो करीब 5 गुना जो हमारा साधारण दूध होता है उससे ज्यादा पाया जाता है, और उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि रोगों से छोटे बच्चों को बचाती है। इसके अलावा जो आपके विटामिन है वो 10 गुना अधिक पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए है, और ये क्योंकि दशावर प्रवृत्ति का होता है तो जो आपके छोटे बच्चे के पशु का जो बच्चा है उसके आहार नली में जो भी गंदगी होती है जिसको हम पहला मल म्यूकोनियम बोलते हैं उसको बाहर निकालने में सहायक होता है
1: जी।
0: इसके अलावा जो आपका कोलोस्ट्रम है, अगर किसी कारणवश आपके पशु ने कोलोस्ट्रम उत्पन्न नहीं करा है या फिर पशु का थन खराब है, इस वजह से बच्चे को आप पिलाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में आप कृत्रिम ये जो कोलोस्ट्रम है वो भी तैयार कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके लिए आप एक अंडे को लेंगे और उसको 5 लीटर गर्म पानी में फेंटेंगे और उसमें करीब 1/2 चम्मच अरंडी का तेल मिलाएंगे और 1/2 लीटर गर्म दूध मिलाएंगे और करीब 10,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई विटामिन ए की और 80 मिलीग्राम ऑरियोमाइसिन एंटीबायोटिक और साथ में थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और उसके साथ इस मिश्रण को जो पशु का बच्चा है उसको दिन में 3 बार अवश्य पिलाएं और 3 दिन तक लगातार पिलाएं और उसके बाद आप मिल्क रिप्लेसर और ये काफ स्टार्टर ये सब आप दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर आपने इसको अधिक मात्रा में दिया तो पशु को दस्त भी लग सकते हैं
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नाक और जो मुंह है उस पर एक झिल्ली सी होती है, उसको साफ करना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: ताकि उसको छोटे बच्चे को सांस की जो प्रक्रिया है वो चालू रहे। ऐसे में आप बच्चे को टांग से उल्टा लटका सकते हैं और ताकि उसकी जो कहीं छिद्र बंद है तो वो खुल जाएं। इसके अलावा जो आप नाभि है, नाभि पे आप ये किसी तरह से किसी ब्लेड को लेके नाभि जो माँ और बच्चे को जोड़ती है उसको 7 ब्लेड से काटें और उस पर टिंचर आयोडीन का घोल जरूर लगाएं, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं
1: जी।
0: और साथ ही जैसे भैंस है, भैंस के बच्चों का जब वो 7 से 14 दिन के होते हैं तो सींग का विहीनीकरण करना अवश्य होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो आपस में लड़ते हैं सींग के कारण एक दूसरे को घायल कर सकते हैं
1: जी।
0: और 10वें दिन से नवजात जो बच्चे हैं उनको जो कृमि नाशक दवा है वो पिलाना जरूरी है, जैसे कि पिप्राजिन है, और इस दवा को फिर आप करीब 1 माह की आयु पर 2 चम्मच और 3 माह की आयु पर करीब 20 से 30 मिलीलीटर तक पिला सकते हैं। अन्यथा पशु में संक्रामक रोगों की संख्या बढ़ती रहती है
1: जी। मैम ये तो रही आहार प्रबंधन की बात कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है और बच्चों को पिलाया जा सकता है, अगर इसके अलावा अन्य सावधानियों की हम बात करें तो हमारे पशुपालकों को किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए?
0: हाँ जी, देखिए जैसे कि गर्मी के मौसम जो है एकदम बरसात का मौसम आ जाता है
1: जी,
0: तो ये जरूरी है कि छोटे बच्चों को शुरुआत से ही वैक्सीनेशन भी कराते रहें और ताकि वो आगे जाके जो हमारी भयानक बीमारियां हैं जैसे खुरपका मुंहपका रोग है या एंथ्रेक्स है या आपका गलघोटू है, लंगड़िया है, तो इन सब की बीमारियों से वो प्रभावित ना हो
1: जी।
0: और संक्रामक गर्भपात से बचाने के लिए 6 माह की उम्र पर केवल मादा को टीका लगना चाहिए। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जो रोजाना के कार्य हैं रखरखाव और चिकित्सा, उसके लिए नवजात पशुओं के शरीर पर पहचान चिन्ह आपको अवश्य बना लेना चाहिए
1: जी।
0: और गाय भैंसों में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके थन एक अतिरिक्त निकल जाते हैं जिससे कि दूध का रिसाव होता है और थनेला का खतरा भी बना रहता है
1: जी।
0: अगर किसी कारणवश कोई थन एक्स्ट्रा है तो उसको पशु 3 से 4 महीने का हो तभी उसको अलग कर देना चाहिए और उस पर दवा लगा देनी चाहिए। साथ ही जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें कोक्सीडिया की बीमारी भी हो सकती है और इसीलिए उसको समय रहते रहते आप दवाई देते रहें
1: जी।
0: और ये भी ध्यान रखें कि जहाँ बच्चे को रख रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पशु आपका कभी भी गीली जगह पे नहीं होना चाहिए,

0: जितना गीला होगा उतना ही वो बीमारी के लिए ज्यादा बहुत जल्दी संक्रमण पा सकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जो गंदगी है पशुशाला में, वहाँ पर पानी के माध्यम से लगातार उसको साफ करते रहें और जो भी मल निकलता है उसका लगातार निस्तारण होता रहे। नहीं तो ऐसे में जो हवा का संचार होता है उस पशुशाला में वो ढंग से नहीं होता और इससे पशु को क्षति हो सकती है। और अगर आपको पशु के अपनी उसकी जगह आरामदायक बनानी है तो आपको उसको हमेशा अच्छा आहार देना पड़ेगा और वातावरण का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित करना पड़ेगा और सफर, इन सब चीजों के कारण जो तनाव है उसको आपको हमेशा कम रखना चाहिए।
1: जी, तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया किस तरह से हमारे पशुपालक भाइयों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उनके पशु स्वस्थ रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। गर्मी में नवजात पशुओं की देखभाल हमें किस तरह करनी चाहिए, और साथियों अब हम आपका सुनवा रहे हैं प्यार सो लोकगीत,
3: और लोकगीत के बोल है चूड़ियां बंगलौरी बंगलौरी मेरे हाथ में। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
4: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुनो प्यारो सो लोकगीत, और अब साथियों हम आपको सुनवा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है। साथियों, हमने बात करी मोहन स्वरूप जी से, ग्राम बेला, ब्लॉक असमोली, जिला संभल से। तो साथियों सुने जो कार्यक्रम। राम राम किसान साथियों, आज हमारी बात ये रही है, एक युवा भैया हैं गांव बेला ब्लॉक असमोली जिला संभल से, तो सबसे पहले हम इनसे करते हैं बात। तो भैया आपको नाम कहाँ है?
1: हमारा नाम मोहन स्वरूप है भैया।
0: अच्छा, और गांव आपको?
1: गांव बेला है।
0: अच्छा, ब्लॉक?
1: ब्लॉक असमोली है।
0: और जिला?
1: जिला हमारा संभल है।
0: तो मोहन स्वरूप भैया, आज हम जो है आपसे बात करेंगे, जो मिट्टी है हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करतेंगे, तो बाको परीक्षण क्यों जरूरी है, जब आते हैं आज हम आपसे बात कर रहे हैं।
1: हाँ हरदेव भैया, ये बात बहुत जरूरी है, सभी किसान भाइयों के लिए जरूरी है।
0: हाँ,
1: क्योंकि हम लोग अनावश्यक खादन को प्रयोग करते रहते हैं और हम लोगों को जानकारी होतना है, तो वाके लिए मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और मृदा परीक्षण जो है हर विकास खंड में फ्री में होता है वो।
0: हाँ,
1: अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी ले जाओ।
0: हाँ,
1: और जांच कराई ली होगी।
0: हाँ,
1: तो आपको रिपोर्ट मिलेगी कि का खेत में डालने हैं, का नहीं डालने हैं, बाय हिसाब से आप डालो तो उससे हमारी अच्छी पैदावार होगी।
0: अच्छा एक बार बताओ भैया, जो मृदा परीक्षण से जो का खेती की लागत कम जाती है, क्योंकि किसान भाई कहते हैं कि हम मृदा परीक्षण करा रही भैया तो लागत कम जाती है।
1: हाँ भैया जरूर, जैसे अब हमारे खेत को कितनी पोटाश की जरूरत है तो वो मृदा परीक्षण से ही तो पता लगा ही।
0: हाँ,
1: और हम ले आए वाए एक कट्टा वाए है, आधे कट्टा ही जरूर।
0: अच्छा,
1: तो अब हमने जब मृदा परीक्षण करा हुआ है तो वहाँ आधे कट्टा ही जरूरत है, तो हम आधा कट्टा लगाएंगे तो हमारा आधा कट्टा बचाए ना बचाए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: जब बचाएगा तो उससे हमें लाभ होगा।
0: बिल्कुल सही बात। अच्छा एक बार बताओ मोहसरू भैया, मृदा परीक्षण कराने से जो हमारी फसल उत्पादन है क्या वहाँ प्रभाव पड़ता है का?
1: हाँ हरदेव भैया, ये मृदा परीक्षण से जब हम पौधे के आवश्यकता अनुसार तत्वों की और मिट्टी की आवश्यकता अनुसार उर्वरक डालेंगे तो अच्छी सी बात है कि पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और उस पर फल भी अच्छा लगेगा, तो इससे हमारी उपज बढ़ेगी तो उससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने मोहन स्वरूप भैया। अच्छा मोहन स्वरूप भैया, हम देखते हैं कि अक्सर हमारे किसान भाई अधिक उर्वरक डाल के प्रयास करतेंगे और बाको अच्छो मानतेंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है?
1: देखो भैया, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक डाले खेत में और बाम मिट्टी को चाहिए कम।
0: हाँ,
1: तो पौधे सूख जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे और पता लगा कि उन पर बाली या बीज नहीं आएगा।
0: हाँ,
1: तो इस स्थिति में हमारे बीज की मात्रा घट जाती है और इससे हमारी उपज में बहुत बड़ी हानि होती है, इसका लाभ हमें बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए मिट्टी की जांच करा कर ही पोषक तत्वों की पूर्ति करें पौधों में, अन्यथा उर्वरक ज्यादा न डालें।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने मोहन स्वरूप भैया। एक बार बताओ मृदा परीक्षण से का हमारे पर्यावरण को लाभ मिलता है?
1: हाँ जरूर, अगर हम अनावश्यक उर्वरक खेतन में डालेंगे बिना मृदा परीक्षण कराए तो वे भाई वायुमंडल में भी घूमेंगे जाएंगे। भाई हम लोग जब फसल को यूरिया को छिड़काव करते हैं तो वह कुछ है तत्व तो हम लोगों को मिल पाते हैं पौधों को हमारे, बाकी तो वायुमंडल में जाती है, और टीम में भी अनावश्यक पोषक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे।
0: हाँ,
1: तो वे जब ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो दूसरी फसल जो है खराब हुई।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा एक बार बताओ भैया, मृदा परीक्षण कितने समय में हमें करवा लेना चाहिए?
1: वैसे तो भैया हर 6 महीने पर कराए लेना चाहिए, लेकिन अगर नाइयो कराए पाते किसान तो साल में जरूर एक बार कराए ले।
0: अच्छा मृदा पर जो नमूना है हमारे किसान भाइयों किस तरह लेना चाहिए? अच्छा मृदा परीक्षण करा पावे?
1: अब भैया जैसे हमारो एक एकड़ खेत है तो हम तो एक एक मुट्ठी जो है चार जगह से उठाते हैं।
0: अच्छा,
1: खेत में एक एकड़ के चार कोनन पे गए, बीच में गए, इस तरीके से 4-5 मुट्ठी मिट्टी इकट्ठी करी और ला कर परीक्षण करा लो बाबू।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ से जो है लगभग हमारे पूरे खेत की जांच हो जाती है।
0: अच्छा सरकार का हमारी जाके संबंध में का सुविधाएं दे रही है किसान को?
1: हाँ सरकार सुविधा दे रही है, फ्री में जो है जांच हो रही है, तो ये सरकार की उपलब्धि है भाई।
0: हाँ,
1: किसानों की उपज बढ़ाने के लिए, और किसान की उपज बढ़ेगी तभी हमारे देश की उपज बढ़ेगी।
0: हाँ बिल्कुल सही सही बात कही आपने भैया। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे भैया इस संबंध में?
1: भैया हम सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, सभी हमारे भैया बंधु जितने भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब अपनी मिट्टी की जांच कराकर ही फसल की बुवाई करें। अब आने वाले समय में धान की फसल लगनी है तो सभी लोग अच्छे से मिट्टी की जाँच कराएं और अधिक पैदावार लें और कम लागत में।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने मोहन स्वरूप भैया, और बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी के साथ, और आपने हमसे बात करी जाकुल्ला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों अभी आप ना सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। मृदा परीक्षण क्यों जरूरी, ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और हरदेव भैया, आगे के कार्यक्रम में क्या है?
0: अब हम अपने साथियों को बता दें एक सूचना।
2: क्या भैया?
0: किसान साथियों, हर महीने के पहले बुधवार को हम सुनवाएंगे सफल कृषक से की गई बातचीत, और दूसरे बुधवार को सुनवाएंगे सफल महिला कृषक से की गई बातचीत, और महीना के तीसरे बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे मासिक कृषि गोष्ठी,
2: और भैया महीने के चौथे बुधवार को सुनवाएंगे सफल कृषि स्टार्टअप, और यदि पांचवों हरदेव भैया ना बुधवार पड़ते हैं तो सफल कृषक से की गई बातचीत सुनवाएंगे।
0: और भैया महीना के पहले गुरुवार को हम सुनवाएंगे आकाशवाड़ी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष,
2: और भैया दूसरे बुधवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनवाएंगे,
0: और साथियों तीसरे गुरुवार को हम सुनवाएंगे आकाशवाड़ी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष,
2: और चौथे गुरुवार को सुनवाएंगे कृषि पत्रिका खेत खलियान,
0: और साथियों अगर पांचवा गुरुवार है तो हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाड़ी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: ऐसी भैया महीना के अगर पहले शुक्रवार है तो हरदेव भैया यहाँ मैं सुनवा जाता हूँ हमारे किसान साथियों को लोक मंजरी, जो फरमाइशी लोकगीत पर आधारित होता है। इसमें हमारे जो किसान साथी हैं वे अपने कुछ लोकगीत और आला सुन सकते हैं।
0: और साथियों दूसरे शुक्रवार को हम सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, खेती बाड़ी से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान।
2: और भैया अगर तीसरे शुक्रवार को लोक मंजरी, जो फार्मेसी लोकगीत पर आधारित।
0: साथियों चौथे शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान।
2: और यदि पांचवा शुक्रवार पड़ते हैं तो भैया फिर वही लोक मंजरी, जो फार्मेसी लोकगीत पर हमारे आधारित है।
0: और अब जो है जाके साथ साथ हमारे किसान भाई जो है हमारा मोबाइल नंबर नोट करें, जो है 0595-2324-326, जहाँ पर इन दिनों हमें फ़ोन कर सकते हैं।
2: हाँ भैया, और भैया जो भी हमारे साथी हैं वे व्हाट्सएप से और SMS के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, और बाकी नंबर है 9410087876।
0: जाके साथ साथ साथियों हमारा ईमेल एड्रेस बहुत नोट कर लें, patramila@rampur.gmail.com, जहाँ पर हमें मेल के माध्यम से भी हमारे किसान भाई जो है प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: जी भैया,
0: और सोशल मीडिया पर साथियों हम एक्टिव हैं, अब हमारी आकाशवाणी रामपुर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, एक्स पर है, यूट्यूब पर भी है, जाके माध्यम से जो है हमारे किसान भाइयों से जो है हमसे जुड़ सकते हैं।
2: जी भैया,
0: और जाके साथ साथ पत्राचारों हमें कर सकते हैं, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन कोड 244901, जहाँ पर हमारे किसान भाई पत्र लिख कर हमसे अपनी समस्याएं को निपटारा कर सकते हैं।
2: तो हरदेव भैया जो तो हमारे जो प्रोग्राम बदले गए ना भैया, उनकी जानकारी आपने बताई, और भैया अब वैसे जो हमारा ही चुको ना वो ही चुको कृषि संकेत को। तो भैया आज कृषि संकेत में हमारे आप किसान साथियों को क्या जानकारी दे रहे भैया?
0: भैया आज के हम कृषि संकेत में अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे जैविक खेती आज की आवश्यकता की।
2: हाँ भैया,
0: क्योंकि जैविक खेती आज की बहुत जरूरत है।
2: जी भैया,
0: है ना भैया, हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई लगातार जो है रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग कर चले आ रहे हैं।
2: जी भैया,
0: अंधाधुंध तरीके से चल कर रहे हैं।
2: जी,
0: हमारी भूमि ऊसर हो जा रही है।
2: जी,
0: बाकी उत्पादन क्षमता घटत जा रही है।
2: जी,
0: बीमारी बढ़त जा रही है, है ना, हॉस्पिटल संख्या बढ़त जा रही है। जब बीमारी बढ़ रही है तो संख्या बढ़ रही है, हमारा खर्चा बढ़त जा रहा है,
2: खर्चा बढ़ जा रहा
0: है। तो भैया बात से बचन के ताई हमारे किसान भाई जो है अभी सही शुरुआत कर सकते हैं।
2: हाँ भैया, है ना, तो जय कारण है हरदेव भैया।
0: हाँ,
2: कि जो हमारे किसान साथी ना वो जैविक खेती को अपना रुझान बढ़ा रहे हैं।
0: हाँ,
2: क्योंकि जैविक खेती में ना प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग किया जाता है, और बासा होत का है वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, और फसलों को भी आवश्यक

0: पोषण मिलता रहता है।
1: भैया जैविक खेती के बहुत लाभ हैं।
0: का भैया?
1: जैविक खेती के बहुत लाभ हैं।
0: हाँ भैया
1: है ना भैया, जैसे जो फसल तैयार होती है
0: जी
1: वो देखी जाए तो काफी हद तक रासायनिक जो तत्व होते हैं उनसे मुक्त
0: मुक्त
1: होती है
0: हाँ,
1: ना,
0: हाँ।
1: तो वैसे जो है हमें अच्छे अनाज मिलतेंगे, अच्छे फल मिलते हैं, अच्छी सब्जी मिलती
0: जी भैया
1: है ना भैया,
0: जी भैया
1: जिसमें जिससे बीमारी कम लगन की संभावना होती
0: जी
1: है।
0: भैया
1: हमारे डॉक्टर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं,
0: जी
1: वे लगातार कह चले आ रहे हैं किसान भाइयों कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करने की कोशिश करो,
0: जी भैया
1: ना तो बीमारी जो है रुकना रही है।
0: जी भैया
1: तो हमारे किसान भाई जागरूक होकर जैविक खेती जो जैविक खेती है बाकी और अग्रसर होकर बाको अपनाए के है ना,
0: जी
1: तो जामे जो है हमारे देश को उद्धार कर सकते हैं।
0: जी भैया, और देखो हरदेव भैया, साथ ही जैविक खेती को एक फायदा और है,
1: बात
0: से जो हमारा पर्यावरण है ना भैया,
1: हुँ?
0: वहाँ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे होता है जो जल है, वायु, मिट्टी को प्रदूषण कम होता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हरदेव भैया, हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं, घड़ी इशारा कर रही है, अब हम ज्यादा समय ना है।
1: हाँ।
0: तो हम अपने किसान साथियों को भैया जो कल को जो विषय है ना,
1: हाँ।
0: वाक्य बारे में अपनी जानकारी देते हैं। हमारे जो कल को चर्चा को जो विषय रहा है वो गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। भेंट वार्ता को विषय रहा है धान रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। लोकगीत सुनवाई जाए। कृषि संकेत में नए बाग लगाने हेतु खेत की तैयारी कैसे करें। और भैया अब चलते चलते हम कल के मौसम की जानकारी अपने किसान साथियों को बता दें।
1: साथियों कल का उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान साथियों 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वायुमंडल में आर्द्रता 30% और हवा की गति साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों हमारा आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए। साथियों अब समय है चलो है आपसे अलविदा लेने को, तो सभी किसान भाइयों को आपके भैया हरदेव की
0: और भैया पंकज की
1: राम राम।

किसान साथी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम छांव बरगद की। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ब्रजराम मौर्य से ये भेंटवार्ता। प्रस्तुति है असीम सक्सेना की।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत है। छांव बरगद की कार्यक्रम, वो कार्यक्रम जिसमें अनुभवों की बात होती है, जिसमें जीवन के उद्देश्यों की बात होती है और कितना हम कुछ हासिल कर पाए हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिक्षाविद श्री ब्रजराम मौर्य जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पृष्ठभूमि शैक्षिक वातावरण से रही है, तो अपनी उस पृष्ठभूमि पर चर्चा के साथ ही शुरुआत क्यों ना करें।
1: धन्यवाद सर जी। मैंने 1992 में सुंदरलाल इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले मुझे रामपुर आने का सौभाग्य भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं इस विद्यालय में आया, बड़ा अच्छा पर्यावरण मिला, परिवेश मिला और हमारे सीनियर्स गुरुजनों ने बड़ा हमको सम्मान दिया। प्रबंधक महोदय ने तथा यहाँ के अभिभावकों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मैं अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा पूर्ण रूप से सक्षम रहा। 2000 के आसपास मैं जब हिंदी प्रवक्ता पद पर पदोन्नत हुआ, उसके बाद में तो इस विद्यालय ने वह उन्नति की कि यूपी बोर्ड की वरिष्ठता सूची में इंटर के दो विद्यार्थियों ने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया।
0: इस तरह से वो परिवेश आपकी मदद करता रहा, शैक्षिक वातावरण के सुधार में भी जो भी संभावनाएं थी उन पर भी आप काम करते रहे। अब सेवानिवृत्त हुए आपको कितना समय हो गया है?
1: सर, मैं 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हुआ।
0: अब सेवानिवृत्ति के बाद क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया है अपने दैनिक कार्यकलापों में

0: अपनी दैनिक दिनचर्या में?
1: हाँ, ये तो खैर स्वाभाविक सी बात है कि सेवा के पश्चात मैंने तो ये अनुभव किया कि एक दूसरा चरण शुरू किया है।
0: दूसरी पारी जीवन की।
1: जैसे ही मेरा कार्यकाल उस समय था सुबह 4 बजे उठने का, वही इस समय भी है। अब मेरा ये है कि उस समय विद्यालय जाना हुआ करता था, अब थोड़ा साथियों के साथ में भ्रमण, जो सुबह की सैर की है, उसके लिए मैं चला जाता हूँ और लगभग 2 घंटे, 4 बजे उठने के बाद 6 बजे करीब पहुँच गया वहाँ, और 1.5 घंटा 7:30 के बाद मैं 8 बजे तक घर पे वापस आ जाता हूँ।
0: तो जब आप अपने हम उम्र लोगों के साथ होते हैं तो बहुत सारी विषयों पर चर्चाएं होती होंगी, खुलकर विचार भी व्यक्त करते होंगे, कुछ अपने दिल की, कहते हैं ना, जो भड़ास है या दिल की जो भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति भी होती होगी। तो किस तरह का परिवेश रहता है वो?
1: जी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा, मेरा जन्म गांव में हुआ, और मेरी उम्र मेरे से ज़्यादा के 80 वर्ष के, 85 90 वर्ष तक के जो बुजुर्ग साथी वहाँ मिलते हैं, अधिकांश तो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, और उसमें भी कहा जाए तो 80% लोग देहात क्षेत्र से संबंधित हैं। उनके पुराने बचपन के अनुभव, विद्यार्थी जीवन के, सेवा काल के, और परिवार संबंधी समस्याएं भी सबसे मिल बांट करके बड़ा आनंद लेते हैं।
0: आपके भीतर का गुरु जब जागता है तब क्या महसूस करता है?
1: हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहां पर है, जिस रूप में है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करे, और जो मानव जीवन मिला है उसको सफल बनाने के लिए साथियों का सहयोग करे, उनसे सहयोग प्राप्त करें।
0: ये काम बहुत मुश्किल हो गया है, खास तौर पर अगर हम अपने घर परिवार की भी बात करें, समाज की बात तो खैर आगे की रही, घर परिवार में भी एक दूसरे का साथ मिलना कितना मुश्किल हो गया है, विचारों की भिन्नता इतनी हो गई है, काम करने का जो दस्तूर है वो भी बदल चुका है, सबको बहुत कुछ जल्दी पा लेने की लालसा रहती है, तो इन सब चुनौतियों के बीच में कैसे?
1: मैं इसमें अपने को परम सौभाग्यवान समझूंगा। 2011 में अपने तीनों बच्चों, एक बेटा दो बेटी
0: जी
1: की शादी से भी निपट गया, और 2009 में बेटी मिथिलेश कुमारी जूनियर में यहाँ शाहबाद में नियुक्त हो
0: अच्छा
1: गई। बेटा 2015 में खालसा इंटर कॉलेज सुभाष नगर बरेली में टीचिंग में ही लग गया। छोटी बेटी 2013 में अनुदेशक के पद पर, मतलब जो है बरेली
0: सभी
1: सिटी
0: बच्चे
1: में,
0: वेल
1: हाँ, शिक्षा
0: सेटल्ड
1: जगत में ही हैं
0: हैं।
1: और सब सुलझे हुए परिवारों से हैं, तो इसलिए मैं अपने को बड़ा ही भाग्यवान समझता हूँ इस मामले।
0: लेकिन आप अपने आसपास भी देखते होंगे बहुत सारे लोग इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो किस तरह से टैकल करें? आप होते तो आप किस तरह से उन परिस्थितियों का सामना करते? क्योंकि ये अवस्था बहुत सारे लोगों के सामने आ रही है, आनी भी है।
1: ये जो नाजुक घड़ियां हैं, मेरे साथ में जो मोहल्ले में रह रहे हैं लोग, ज़्यादातर रेलवे से रिटायर्ड हैं, और लोको पायलट जो कहा जाए, तो उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। उन बेचारों के जो बच्चे हैं, बहुत एक दो जो नियम में आ गए थे, किसी ने BRS लिया, असहाय
0: जी
1: हो जाने पे उन्होंने अपनी जगह लगवा दिया, तो उनसे विचार मिलने पे ये कहते हैं कि देखिए, माँ की देख रेख में जो बच्चों का पढ़ाना लिखाना है वही संभव है, हम लोग तो अपनी ड्यूटी से ही नहीं निपट पाए। अब स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा सम्मान मुझे ज़्यादा मिल जाता है कि टीचर होने के नाते आपके बच्चे टीचिंग में लग गए, उनका सोचना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने केवल नौकरी की थी, ड्यूटी की थी अपनी यहाँ इस विद्यालय में, मेरे बच्चों की देख रेख, एक शब्द कहना ठीक नहीं लग रहा है कि
0: जी
1: अशिक्षित पत्नी, भले ही शहर की थी, बरेली से
0: जी
1: मेरी शादी हुई,
0: जी
1: तो उस माँ ने अपने तीनों बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया। मुझे लेट नौकरी मिली थी तो मैं पूरी तरह से अपनी नौकरी के प्रति ही वफादार रहा।
0: जी पूरे समर्पण के साथ, और अगर सद्भावनाएं हो तो फल भी बहुत अच्छा मिलता है, वही कुछ आपके साथ रहा। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, व्यवहार में भी बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि बुजुर्गों के साथ एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी समस्या रहती है, वो जब कुछ कहते हैं तो दूसरे जो सामने वाले हैं उनके परिजन उनको लगता है कि थोपी जा रही है ये बात, और जब बुजुर्ग अपनी बात कहते हैं तो उनको लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो ये जो द्वंद्व की स्थिति है, इससे कुछ निपटने के लिए कुछ चिंतन, क्योंकि आपका तो

0: विषय साहित्य ही रहा है, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारी किताबों को आपने पढ़ा है, तो क्या कुछ इस तरफ भी कभी सोचा?
1: जैसा मैंने अनुभव किया अपने घर में, तो एक तो आज के जो संसाधन हैं, जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल को आप चलाएं ज़्यादा स्तर पे, तो वो मुझे नहीं आता। अनुभव भले ही मेरा ज़्यादा है, लेकिन वो आज के परिवेश में ना के बराबर है। जो बच्चे कंप्यूटर जान रहे हैं, उनके जो आज के वातावरण का ज्ञान है, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता, तो वास्तव में जब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं तो मेरा अनुभव भी बेकार हो ही जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो उलझ जाते हैं कहीं पर सामाजिक परिवेश में आकर के, हमारे साथ ऐसा हुआ, अब मेरा उन्हें समझाना है कि तो होता ही है हर किसी के साथ, आप क्या समझ रहे हैं मेरे जीवन में ये परिस्थितियाँ नहीं आई, परेशानियाँ आई, उनका सामना किया। अब इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जो स्वास्थ्य की रचना है खान पान से, क्योंकि मैं देहात क्षेत्र से रहा, मिट्टी से सब
0: जुड़े
1: जुड़ा
0: हुए हैं
1: रहा,
0: जी।
1: तो मिट्टी एक ऐसी औषधि है जिसमें सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन मैं गांव से जाता हूं, वहां देखता हूं, तो वहां आजकल उन बच्चों में भी जो नई जनरेशन के हैं उनमें भी काफी संस्कार हैं।
0: अच्छा, अब आपकी दिनचर्या इन दिनों क्या रहती है? क्योंकि साहित्यिक अभिरुचि कहीं ना कहीं मन में हिलोर जरूर लेती होगी और रचना धर्मिता भी बेचैन करती होगी कि कुछ किया जाए। तो किस तरह से इन सब चीजों को लेकर आप चल रहे हैं और दिनचर्या किस तरह की रहती है आपकी?
1: जैसा मैंने बताया आपको कि सुबह 4 से 4:30 के आसपास में
0: जी
1: बिना
0: जी
1: अलार्म के उठना है। एक तो ये बंधन ख़त्म कर दिया कि हाँ इस टाइम पे उठना है, उठना है, तो स्वेच्छा से ही आँख खुल जाती है। और तैयार होने के बाद में जैसे ही गए, वापस आए,
0: जी
1: चाय नाश्ते से निपटने के बाद जो समाचार पत्र का दर्शन है उसको देखा पढ़ा। अब जो मेरी दिनचर्या पूजा पाठ में है वो रामचरितमानस मेरा जो प्रिय और आस्था का ग्रंथ रहा है। मैंने जो भी बेरोजगारी से पहले किसी गुरु से मंत्र मिला तो उन्होंने हमसे ये कहा कि जय सीताराम का पाठ 108 बार लिखो। बेरोजगारी में है कि मरता क्या नहीं करता,
0: जी।
1: वो एक मंत्र सा हमको सिद्ध हुआ और आज भी वो दिनचर्या मेरी जारी है। मैं दिन में पूजा के टाइम पर से ही 108 बार जय सीताराम का पाठ लिखता हूँ। उसके बाद जैसे हमारा धार्मिक ग्रंथ ये विनय पत्रिका है बाबा तुलसीदास जी की, और यहाँ काव्य पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के लिए तो काव्य विभाग मुझे किताब देखने की आवश्यकता नहीं थी, उसको बरकरार रखने के लिए अब मुझे ये मालूम हो रहा है कि इसमें कहा क्या गया था। उस समय तो ये लग रहा था कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, टाइम पूरा करना, नौकरी पूरी करनी है, लेकिन अनुभव से अब तमाम और बातें भी जो यूट्यूब वगैरह से हम सुनते हैं, मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि माता पिता का आशीर्वाद, स्वयं की मेहनत, गुरुजनों का जो अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा से ही सब संभव है।
0: ईश्वर की कृपा से ही घर में सुख शांति और आनंद पूर्ण जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। तो आज छांव बरगद की कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, जो युवा हमें सुन रहे हैं, जिन्हें कल बुजुर्ग होना है, तो वो सब जीवन के अनुभव का लाभ उठाएं। तो आप आज की पीढ़ी से, हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है उससे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से?
1: मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें अब आत्मसंयम जिसे कहेंगे, अभी इच्छाएं तो बच्चे की तरह ही जागृत
0: हाँ,
1: होती
0: अनंत
1: हैं, तो थोड़ा सा बोलने की शक्ति पर कंट्रोल किया जाए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाभ आपको मिला है, बड़े सौभाग्यवान हैं जिनके परिवार में आज भी माता पिता के बाद दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं, ये हमारे अनमोल रत्न हैं, तो इनको बड़ा संभाल करके रखा जाए।
0: ब्रजराम मौर्य जी, आज आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सारगर्भित बात जीत आपके साथ रही। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका

ये था कार्यक्रम छाव बरगद की। इस कार्यक्रम में आपने सुनी श्री ब्रजराम मौर्य से भेंटवार्ता, प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

आज 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचेगी शोभा माथुर और सुमन यादव की आवाजों में कुछ गजलें। रात्रि 8 बजे आपकी रेडियो सेट पर होगा व्हाट्सएप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

0: ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। अब प्रस्तुत है कुछ आवश्यक संदेश।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: मम्मी मम्मी, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
6: अभी लाई।
7: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे, और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया। क्या करूँ इस बचे हुए पानी का?
5: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
7: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
8: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
1: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
2: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
1: जल है तो कल है,
2: यही चिंतन पल पल है।
3: पानी को बचाकर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

मीडियम वेव 336.7 मीटर व एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर। 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से नशर किए जाएंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
2: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
2: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दो दिवसीय

0: अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
2: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
3: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जाए।

0: है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ व FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं शोभा माथुर और सुमन यादव की आवाजों में कुछ गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे शोभा माथुर और सुमन यादव की आवाज़ों में कुछ गज़लें। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाता चल में स्वीकार कीजिए आपकी आज की रेडियो पार्टनर प्रियंका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेवफा से। इस गीत को गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी ने।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे फिल्म बेवफा से। इस गीत को गाया था कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी ने। सुनना चाहा था आप सभी ने चकला बाजार पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल व समस्त जिंदल परिवार और खुशदिल परिवार। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांटकर, सरिता ग्वांटकर, प्रिंस एकांश ग्वांटकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वाडकर, सिद्धांत ग्वाडकर और अर्जुन ग्वाडकर। इसी के साथ आकार हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाडकर, सुमित और कुमारी ध्वनि ग्वाडकर। कबीर रेडियो लिसनर क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत। डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया। इसी के साथ शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा। कार्यक्रम

चौधरी बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। लाल माता सुदामा नगर, रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदी भाई बागरी। रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। इंदिरा बिहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव। बक्सर बिहार से राज डीएस अंसारी और फातिमा राज अंसारी। सरगुजा मेन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और समस्त डोमिन परिवार। इसी के साथ तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, जाहिद अली। इसी के साथ मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह गौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दबिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू एकम, दमन और अभिजोत। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म झूम बराबर झूम से। इस गीत के गायक कलाकार हैं राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर।

राहत फ़तेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की युगल आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म झूम बराबर झूम से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तशन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना।

देशमुख। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया फरुखाबादी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुजाहिर अली अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। बडिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद और तरुण यादव। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना और निवान शर्मा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी के साथ शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, लालता खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की योगा लवाजों में ये गीत फिल्म तशन से।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की युगल आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तशन से। कार्यक्रम में पेश है अगला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। इस गीत के गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह। सुनना चाहा है आप सभी ने। संबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओसवी यादव। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। तालुका निवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबाना और यश मंसूरी। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खां, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, सहनाज, बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान। इसी के साथ राजद्वारा कोटी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी। करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान। इसी के साथ संधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज।

धायरी पुणे से, विजय कांबले बेबी शौर्य, श्रेयश कांबले अंकिता, रमाबाई कॉलोनी से वैभव चौहान, आभिर चौहान, भीमराव चौहान और सुजाता चौहान। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सुखविंदर सिंह की आवाज में, फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से।

0: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: ये था कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से

लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत

0: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है।

0: हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पे धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
2: जब आपने पहली बार योग

0: शासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आईं और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2 बाय 6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर। तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे,

0: किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच

बहती हुई एक नदी है, कभी शांत कभी उफनती कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईआईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है, वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है, जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं.
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं rather than your own compositions?
2: बिल्कुल है, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
0: अच्छा.
2: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइल्ड इट,
0: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया.
1: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी।

0: कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
1: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
1: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: देयर इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्ले सीन टू बिहोल्ड, टू सीइंग देम कम द शूर्पणखास।
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू राम एंड लक्ष्मण फ्रॉम दैट राक्षसी बावन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लव।
1: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी, इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kala Nidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांडड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांडड़ा। यूशिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत ने फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on

यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:50 पर हम अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर एक साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।